रहाउ। कथन सुनावन गीत निके गावन मन मह तरते बागार। अत सुंदर बहु चतर सुयाने विद्या रसना चार। मान मोह तेर मेर तेर बिभरजत एहि मार्ग खंडे तार। कहो नानक तिन पव जल तरी आली प्रभ कृपा संत संगारू। राग देव गंधारी महला पंजवां कर पंजवां।

समसर को उला गए टूढ़ रहे हम मूछा राऊ बहु बेअंत अत बड्डो गाहर थहा नहीं अग हुचा तोल न तुलिया मोल न मुड़िया कत पाई है मन रुचा खोज संखा अनकत पंथा बेन गौर नहीं पहुचा कहो नानक कृपा करी ठाकुर मैल साधु रस पुंचा देवगंधारी महला पंजवा मैं बोबिद पेख्यो दूजा नाही री को खंड दीप सब पीतर रवया पूर रहे हो सब लो राउ आगम अगम्मा कवन मोहम्मा मन जी वै सुन सो चार आश्रम चार बरन्ना मुक्त भय सेव तो गौर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया द्वितिया गए सुख हो कहो नानक पव सागर तरिया हार निध पाई सहजो राग देव गंधारी महला पंजवा कर पछेवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद

देवगनारी महला नौवा। यह मन नायक न कहो करे सीख सखाए रहो अपनी सी दुरमत दे नाक डरे राओ। मद माया कह पायो बाघरो हार जास नह उचरै कार परपंच जगत को डह कह अपनो उदर परै। स्वान पूछ जो हो ना होए ना सुधाओ कहो ना कांत रहे कहो नानक भज राम नाम नित जानते काज सरै। देव गंधारी महला नावा सब किस जीवित को व्यवहार मात पिता भाई सुत बंधप अर फुन ग्रह की नार राव। तन ते प्राण होत जब न्यारे।

दूतन संगरिया अपयंगन बसरिया अनक उपरिया तौ मैं हर हर करिया तौ सुख सहजरिया रहो मिथन मोहरिया आन कौ मेरिया विच घूमन किरिया सगल बटरिया बिरख एक तरिया बहो बंदे परिया थेर साध सफरिया जय कीर्तन हरिया नानक सर नरिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग विहागड़ा महला नौवा हर की गत ने को जाने जोगी जति तपी पच हारी अर बहु लोग सियाने राव किशम छिन्मय आराउ रंक कौ करई राउ रंक कर डारी रीते परे परे सख नावै जहते जहता को व्यवहारी अपनी माया आप पसारी आपै देखन हारा नाना रूप धरे बहु रंगी सबते रह न्यारा अगणत अपार अलख निरंजन जेह सब जग बरसा परमायो सगल धर्म सगल भरम ताज नानक प्राणी चरण ताहे जत लायो राग विहागड़ा शांत।

हर कथा सुनाई राम गुरमुख सदा राव अराध हर मिल जंडड़िए मन चंदड़ा फल पाए राम पावे राम नानक भाजे हर शरणागति मेरी जंदड़िए वडभागी नाम त्यावे राम कर कृपा प्रभ आई मेल मेरी जंदड़िए गुरमुख नाम प्रगासे राम हाउ हर भाजो ओडीणिया मेरी जंदड़िए ज्यों जल बिन कमल उदासे राम गुरपूरा मेल आया मेरी जंदड़िए हर सज्जन हर प्रभ पासे राम धन धन गुरु हर दसया मेरी जंदड़िए जन नानक नाम बिगासे राम राग विहागड़ा महला चौथा अमृत हर हर नाम है मेरी जंदड़िए अमृत गुरमत पाए राम हो मैं माया बिख है मेरी जंदड़िए हर भगत हर अमृत बिख लै जाए राम मान सुका हरिया कहोया मेरी जंदड़िए हर हर नाम त्याई राम हर भाग वड्डे लिख पाया मेरी जंदड़िए जन नानक नाम समाई राम हर सेती मन भेद्या मेरी जंदड़िए ज्यों बालक लग दुध खीरे राम हर बिन शांत न पाई है मेरी जंदड़िए ज्यों चात्रक जल बिन टेरे राम सतगुर शरणी जाय पाऊं मेरी जंदड़िए गुण दसे हर प्रभ केरे राम जन नानक हर में लाया मेरी जंदड़िए हार घर वाजे शब्द कनेरे राम मन मुख हो मैं विछड़े मेरी जंदड़िए बिख खास बाधे हो मैं जाले राम ज्यों पंखी को पोत आप बनाया मेरी जंदड़िए त्यों मन मुख सब वास काले राम जो मोह माया चितलाएं दे मेरी जंदड़िए से मन मुख मूड बिताले राम जन त्राहे त्राहे शरणागति मेरी जंदड़िए गुरु नानक हर रखवाले राम हर जन हर ले बुबरे।

क्या गुण आघव कर्ण जो सेव है जो सेव तुद जी जन नानक दिन कुर्बान हर त्याव है हर त्याव तुद जी से जान जुग मह सुखवासी से मुक्त भय जन हर त्याया जी दिन तूटी जम की भासी जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी दिन का पाओ सब गवासी जन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जन हर त्याया जी जन नानक दन बल जासी

ना हो जति सति नहीं पढ़या, मूर्ख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक दिन की शरणा, जन तू ना ही विसरिया। आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, अब्र काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल।

सब आज संगड़े आए। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सतर हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे भरया है, मरण काल का त्रास ने भरया है। हू जो सदा हमारे पछा, सरिया सुजू कर रक्षा। राख ले हम रख नहारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुलटन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाई ब्रह्मा बपतरा, काल पाई शिवजू अवतरा। काल पाई कर विषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जबन काल जोगी सब कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो। जबन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जबन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तसही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। सेवकन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को बल मोह बद कियो। कड़ कड़ के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृढ़ कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानाए, गड़ गड़ के बट बट की जानाए। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा। जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझो चारे।

ताका मूढ़ चारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताको कर्पहन अनुमानत महामूढ़ कश भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत न पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पिन पिन दोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केहे विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कहीं पूपा अंड जजे रजसे तिज कीने उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा व बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए जाम्पव आदि जुगाद स्वरूप सुजाम्पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो वार सिख संग्रो दोष जेते उठवत पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस्तुज तब सरणी परे तनके दोष्ट दुखता वह मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए है ताके काल निट न आए है रक्षा होए ताहे सब काला दोष्ट रहष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तन कमो हरे हो हृदय सद कर्म सब होई दोष्ट शाह अश्व सके न कोई

कुरान अनेक कहे मत एक न माने सिमरत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहे हम एक न जाने सरी असबान कृपा तुमरी कार मैं न कहे सब तोहे बखाने दोहरा।

सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज से ती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द।

आवे। नाम जिनकै मन बसियावा जे शब्द कनेरे, कह नानक सचे साहिब क्या नहीं करते रहे। साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मनाए बसया, जन इच्छा सब पजाइया। सदा कुर्बान कीता गुर विटहो, जिस दियां ही वडियाइया। कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तत कर सुभागै, कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुद जन कौ, से नाम हर कह लागे। कह नानक तय सुख होआ, तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो बड़ भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभु पाया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सची बाणी। संत साजन पै सरसे, पूरे गुरते जानी। सुनते बनीत कहते पवित, सतगुर हया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवां, थाल विच तिन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबसे आधारो। जे को खावे जे को पुंचै, तिसका होए उधारो। ए वास्तव तजी न जाई, नित नित रख उर तारो। तम संसार चरण लग तरियै,

तां सर्व सुख पावे है मेरे मना, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हार, जाकर वस है काम तेना।

कुछ काम से भार है रोक लगी आज सादी के पाप दरबार है आज चल की रोशनी कल दुनिया उस रोशन बना से बार है असि भाजिया मोरिया चाल दे सच कहते हैं धर्म की मान दे मरना पिया से मरा

0: और प्रभु दा जगत उपर है, मनुख मद देच खड़ा है। कदी प्रभु दे जगत दी खिच हो जांदी है, ए धर्म मंदरां दा रुख करदा है, ए धर्म ग्रंथां दा पाठ पठन करदा है, ए सत पुरुषां दी सोबत विच बैठदा है और बैठ के आनंद माणदा है, लेकिन अजे आनंद माण ही रहिंदा है, फिर पशुआं दे जगत दी खिच पैदा हो जांदी, फिर ए थल्ले आ जांदा है। जिवें असीं देखदे हां घड़ी दा पेंडलूम सज्जे तो खब्बे हो जांदा है, हू बहो मनुख दा मन कदी सज्जे कदी खब्बे, कदी पशुआं दा जगत कदी प्रभु दा जगत, अडोल अवस्था प्रभु दी नसीब नहीं हो रही, कारण कि पशुआं दी अपनी खिच है, परमात्मा दी अपनी खिच है। सतसंग ते साधना दुते बहुत प्रबल जोर इस वास्ते दिता गया है कि मनुख इस पशुआं दी खिच तो बच के प्रभु दे जगत विच पहुंच जाए और लीनता इस ढंग दी इसनू नसीब होवे, जैसे कि गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा फरमान है, नानक लीन भयो गोबिंद सिंह ज्यों पानी संग पानी। सरता मरुथल विच भी खो सकती है और सरता सागर विच भी खो सकती है। सरता अगर मरुथल विच खो गई तो अपनी होंद मिटा बैठेगी, और सरता अगर सागर विच खो गई तो सागर दा रूप हो जाएगी। मनुख अगर पशुओं दे जगत विच खो गया तो मनुखता भी खो देगा, और मनुख अगर परमात्मा विच लीन हो गया तो परमात्मा दा ही रूप हो जाएगा, ईश्वर दा ही रूप हो जाएगा, और ईश्वर दा रूप होण वास्ते ही मनुख इस जगत विच आया।
1: केलबो दी रंगीली धरती दे वसनीक श्रोतियो, तुसीं इह प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तों सुन रहे हो। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.
4: राग तना श्री बाणी भगत कबीर जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरु मर्म न जाना, संत संगत राम हृदय बसाए राव। हनुमान सर गरुड़ समाना, सुरपत नरपत

लागा। मात पिता पाई सुत बनता, कहो को है काका रहाओ। जब लग जोत काया में बरते, आपा पशु न बूझे। लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझे। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के परमा। केवल नाम जपो रे प्राणी, पर वो एक की सरना। जो जन पाओ भगत कछ जाने, ताको अचरज काहो। जो जल जल में पैसना निकसे, त्यों तुर मिलियो जुलाहो। हर के लोगा मैं तो मत का पोरा, जो तन का सी तजह कबीरा। रमैये कहानी हो रहा रहाओ। कहत कबीर सुनो रे लोई, परम न पूलो कोई। क्या काशी क्या ऊखर मगहर।

ऐबो पूछ तप कर बाहुर ऐबो क्या मांगो किस थिर नाही राम नाम रख मन माही रहाओ सोबा राज दिवे बड़ियाई अंत न काहू संग सहाई पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया इनसे कहो कम ने सुख पाया कहत कबीर अवर नहीं कामा हमरे मन सन राम को नामा राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई रहाओ बनता सुख दे ग्रह संपत सुखदाई इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधि आई अजामल गज गन का पतित कर्म कीने तेउ उत्तर पार परे राम नाम लीने सूकर कूकर जोन प्रमे तऊ लाज न आई राम नाम छाड़ अमृत काहे बिखाई तज परम कर्म विद निखेद राम नाम लेही गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही।

करके नींद खुदाई, ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते को अधिकाई, जिन तृण तर मुंड बलाए हमरो करता राम स्नेही, काहे रे नर गर्भ।

बीज न खाई, सर्व से इनकी लंका होती, रावण से अधिकाई, कहां भयो डर बांधे हाथी, किन मैं तई पराई, दुर्वासा स्यों करत ठगौरी, जादव ए फल पाए, कृपा करी जन अपने ऊपर, नाम देव हर गुण गाए, दस बैरागन मोह बसकीनी, पंचों का मिट नाम हो, सत्तर दो परे अमृत सर, दिख को मार कडावो, पाछे बहुर ना आवन पावो, अमृत बाणी करते उचरो, आत्म को समझावो, रहाओ, बजर कुठार मोए है छीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, ए संसार ते तम ही छूटो, जो माया नह लिपटावो, माया नाम गर्व जोन का, ते तज दर्शन पावो, इत कर पगते करें जो जन, तिन पौ सगल चुकाई है, कहत नाम दियो बाहर क्या परमो, ए संजम हर पाई है, मारवार जैसे नील बालहा, बेल बालहा करहला, जो कुरंक निस्नाद बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो, अत रंग रूड़ो मेरो रामैया रहाओ, जो तरनी को इंद्र बालहा, कुसुम बास जैसे पवरला, जो कोकिल को अंब बालहा, क्यों मेरे मन रामैया, चकवी को जैसे सूर बालहा, मान सरोवर हंसला, जो तरनी को कंत बालहा, क्यों मेरे मन रामैया, बारिक को जैसे खीर बालहा, चात्रिक मुख जैसे जल तरा, मछली को जैसे नीर बालहा, क्यों मेरे मन रामैया, साधिक सिद्ध सगल मुन चाहे, बिरले काहू डीठला,

हर हर नाचंती नाचना पहल पुरसादिरा अथोन पुरसाद मरा असगा अस उसगा हर का बागरा नाचे पिंदी में सागरा रहाओ नाचंती गोपी जना नैया ते बैरे कना।

उबकले संसारा, प्रम प्रम आए तुमसे द्वारा। तू कुन रे मैं जी नामा, हो जी आला ते निवारणा जम कारणा। पतित पावन माधो बिरद तेरा, तन ते वै मुन जन जिन त्यायो हर प्रभ मेरा। मेरे माथे लागी ले तूर गोविंद चरणन की, सुर नर मुन जन तिन्हू ते दूर रहाओ। दीन का दयाल माधो गर्भ परहारी, चरण शरण नामा बल तिहारी। तना श्री भगत रविदास जी की एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजै। बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजै। हों बल बल जाओ रमैया कारने, कारण कवन अबोल रहाओ। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, श्रवण बानी सुजस पूर राखो। मन सो मद कर करो चरण हृदय करो, रसन अमृत राम नाम पाखो। मेरी प्रीत गोविंद से जिन कटे, मैं तो मोल महंगी लई जी सटे रहाओ। साध संगत बिना पाओ नहीं उपजे, पाव बिन भगत नहीं होए तेरी। कह रविदास एक बेनती हर त्यों, तैज राखो राजा राम मेरी। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे रहाओ। नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो ले छुटकारे। नाम तेरा अम्बुला नाम तेरो चंदनो, कस जपे नाम ले तुझे कौचारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, पय उजियारो पवन सगलारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार अठारे सगल जुठारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पण, नाम तेरा तू ही चवर टोलारे। दस अठा अठ सठे चारे खानी, यह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है।

नारायण निंदस्काए पूली गवारी, दुकृत सुकृत थारो कर्मरी रहाओ। संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे, कुल जन्म दे मिलो सारंग पान रे। कर्म कर कलंक मफी तसरी, विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी। पंखी राय गरुड़ ताचे बादवा, कर्म कर अरुण पिंगलारी। अनेक पातक हरता त्रिभुवन नाथरी, तीरथ तीरथ प्रमता लहना पारवी। कर्म कर कपाल मफी तसरी, अमृत सस्य तेन लक्ष्मी कल्पतर। शिखर सुनागर नदी चेनासंग, कर्म कर खार मफी तसरी। दादी ले लंका गढ़ उपाड़ी ले रावण, बन फल बिसल आन तोखी ले हरी। कर्म कर कछौटी मफी तसरी, पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी। कर गेहन ताचे मोह जापी अले, राम चे नाम बदते त्रिलोचन राम जी श्री सैन। तूप दीप कृत साज आरती, वारने जाओ कमलापति। मंगला हर मंगला नित मंगल रा

बननी का अनाज मंगो सब्जी का गऊ पैस मंगो लावेरी इक साजन तुरी चंगेरी कर की गीहन चंगी जन कन्ना ले गए मंगी जैसरी महला चौथा कर पहला चौक दे इको अंकार सतगुरु प्रसाद मेरा ही अरे रतन नाम हर बसिया गुरहास तरयो मेरे माथा जन्म जन्म के किलबिक दुख उतरे गुरु नाम दियो रिन लाथा मेरे मन पज राम नाम सब अर्था गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया बिन नामे जीवन बिरथा रहाओ बिन गुरु मूड पए है मन मुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण न सेवे कबहू तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफल्यो जन्म सनाता मोको की जय दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा हम अंधले को गुर अंचल दीजै जन नानक चले मिलन था जैसरी मैला चौथा हीरा लाल अमोलक है पारी बिन गाहक मीका ठाका रतन गाहक गुर साधु देखियो तब रतन बिकानो लाखा मेरे मन गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मिलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा रहाओ मन मुख कोठी अज्ञान अंधेरा तिन कर रतन न लाखा ते उजड़ परम मोए गावारी माया पुअंग दिख चाखा हर हर साध मेलो जननी के हर साधु शरण हम राखा हर अंगीकार करो प्रभु स्वामी हम परे पाग तुम पाखा जेवा क्या गुण आख वखाने तुम वड अगम वड पुरखा जन नानक हर कृपा तारी पाखान डुबत हर राखा जैसरी महला चौथा हम बारक कछु न जाने गत मित तेरे मूरख मुग्ध इयाना हर कृपा तार दीजै मत उत्तम कर लीजै मुग्ध सियाना मेरा मन आलसिया उगलाना हर हर आन मिलायो गुर साधु मिल साधु कपट खुलाना रहाओ गुर किन किन प्रीत लगावो मेरा ही रे मेरे प्रीतम नाम पराना बिन नामे मर जाइए मेरे ठाकुर ज्यो अमली अमल लुवाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर पाग पुराना तिन हम चरण सरेवे किन किन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा तारी मेरा ठाकुर जन बिछड़िया चिरी मिलाना तन तन सतगुरु जिन नाम दृढ़ाया जन नानक तिस कुर्बाना जय श्री महला चौथा सतगुरु साजन पुरख वड पाया हर रसक रसक फल लागबा माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी गुर बचनी बिस हर काडबा मेरा मन राम नाम रस लागबा हर किए पतित पवित्र मिल साध गुर हर नामे हर रस चाखबा रहाओ तन तन वड पाग मिलियो गुर साधु मिल साधु लिव उन मन लागबा तृष्णा अगन बुझी शांत पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायबा तिनके पाग कीन तुर पाए जिन सतगुर दर्श न पाए बा ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी सब बिरथा जन्म तिन जाए बा हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेवे हम हर मीठ लगाए बा जन नानक रेण साध पग मांगे हर होए दयाल दिवाए बा जैसरी महला चौथा
जिन हर हृदय नाम न बस्यो तिन माफ की जय हर बांजा तिन सुन्नी दे फिरें बिन नावे होए खप खप मोए करांजा मेरे मन जप राम नाम हर माजा हर हर कृपाल कृपा प्रभ तारी गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाओ हर कीरत कल युग पद उत्तम हर पाईए सतगुर माजा हौं बलिहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा दर्शन साध मिलियो वड पागी सब किल विख गए गवाजा सतगुर साओ पाया वड दाना हर किए बहुगुण साजा जिनको कृपा करी जग जीवन हर उतारियो मन माजा धर्म राय दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा जैत श्री मैला चौथा सत संगत साध पाई वड पागी मन चल तो पयो अरूड़ा अनहत तुन वाजे नित वाजे हर अमृत तार रस लीड़ा मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा मेरे मन तन प्रीत लगाई सतगुर हर मिलियो लाए चपीड़ा रहाओ साकट बंद पए है माया बिक संचय लाए जकीड़ा हर के अर्थ खर्च नह साके जमकाल सहे सिर पीड़ा जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु बहु सरदा लाए मुख तूड़ा हलत पलत हर शोभा पावे हर रंग लगा मन गूड़ा हर हर मेल मेल जन साधु हम साध जना का कीड़ा जन नानक प्रीत

सतगुरु प्रसाद। हर हर सिमरो अगम अपारा, जिस सिमरत दुख मिटे हमारा। हर हर सतगुरु पुरख मिलावो, गुर मिले सुख होई राम। हर गुण गावो मीत हमारे, हर हर नाम रखो उधारे। हर हर अमृत बचन सुनावो, गुर मिले प्रगट होई राम। मधुसूदन हर माधो प्राणा, मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना। हर हर दया करो गुर मेलो, पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम सदा सुखदाता, हर कै रंग मेरा मन राता। हर हर महापुरख गुर मेलो, गुरु नानक नाम सुखोई राम। जय श्री महला चौथा। हर हर हर हर नाम जपाहा, गुरमुख नाम सदा ले लाहा। हर हर हर हर भगत बिरलावो, हर हर नाम उमाहा राम। हर हर नाम दयाल सियाहा, हर के रंग सदा गुण गाहा। हर हर हर जस कुमर पावो, मिल सत्संग उमाहा राम। आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम ले लाहा। हर हर कृपा तार गुर मेलो, गुर मिले हर ओ महाराम। कर कीरत जस अगम अथाहा, खिन खिन राम नाम गावाहा। मोको तार कृपा मिलिए गुरदाते, हर नानक भगत ओ महाराम। जय श्री महला चौथा। रस रस राम रसाल सलाहा, मन राम नाम पीना ले लाहा। किन किन भगत करें दिन राती, गुरमत भगत को महाराम। हर हर गुण गोविंद चपाहा, मन तन जीत शब्द ले लाहा। गुरमत पंच दूत वस आवे, मन तन हर ओ महाराम। नाम रतन हर नाम जपाहा, हर गुण गाए सदा ले लाहा। दीन दयाल कृपा करमा दो, हर हर नाम ओ महाराम। जप जगदीश जपो मन महा, हर हर जगन्नाथ जग लाहा। तन तन वड़े ठाकुर प्रभ मेरे, जप नानक भगत ओ महाराम। जय श्री महला चौथा। आपे जोगी जुगत जुगाहा, आपे निरपौ ताड़ी लाहा। आपे ही आप वरते, आपे नाम ओ महाराम। आपे दीप लो दीपाहा, आपे सतगुरु समुंद मथा। आपे मथ मथ तत कड़ाए, जप नाम रतन ओ महाराम। सखी मिलो मिल गुण गावाहा, गुरमुख नाम जपो हर लाहा। हर हर भगत दृढ़ी मन पाई, हर हर नाम उमाहाराम। आपे वड दाना वड साहा, गुरमुख पूंजी नाम विसाहा। हर हर दात करो प्रभ पावे, गुरु नानक नाम उमाहाराम। जय श्री महला चौथा। मिल सत संगत संग गुराहा, पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा। हर हर कृपा तार मधुसूदन, मिल सत संग उमाहाराम। हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा, कर कृपा सतगुरु मिलाहा। गुण गावे गुण बोले बाणी, हर गुण जप उमाहाराम। सब तीर्थ वर्त जग पुन तोलाहा, हर हर नाम ना पुजे पुजाहा। हर हर अतुल तोल अत पारी, गुरमत जप ओ महाराम। सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा, किलविक मैल पाप तोवाहा। दीन दयाल हो जन ऊपर, देहो नानक नाम ओ महाराम। जय श्री महला पंजवा। कर तीजा इको अंकार, सतगुरु प्रसाद।
कोई जाने कवन ईहा जगमीत। जिस होए कृपाल सोई विद बूझै ताकि निर्मल रीत रहाओ। मात पिता बनता सुत बंदत इष्ट मीत अर भाई। पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंत है को ना सहाय। मुक्त माल कनक लाल हीरा मन रंजन की माया। हा हा करत बिहानी अवदह ता मैं संतोख न पाया। हस्त रथ अश्व पवन तेज तनी पूमन चतरांगा। संग न चालियो इनमें कछुए ऊट सिदायो नांगा। हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के ताके हर हर गाये। नानक की हां सुख आगे मुख उजल संग संतन के पाये। जैत श्री महला पंजवा करती जा दुपदे इकोंकार। सतगुरु प्रसाद देहो संदेश रो कहियो प्रय कहियो। विषम पई मैं बहु विद सुनते कहो सुहागन सहियो रहाओ। को कह तो सब बाहर बाहर को कह तो सब महियो। वर्ण ना दिसे चिन्ह ना लखिए सुहागन शांत बुझियो। सर्व निवासी कट कट वासी लेप नहीं अल्पइयो। नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बसइयो।

बेसुमार बेअंत बड़ दाता, मनहे गहीरो पेक प्रभु को, जो चाहो सोई सोई पावो, आशा मनसा पूरो जप प्रभु को। गुर प्रसाद नानक मन वसिया, दुख न कबहू चूरो बुझ प्रभु को। जय श्री महला पंजवा, लोड़िंदड़ा साजन मेरा, कर कर मंगल गावो नीके, कट कट तिसे बसेरा रहाओ। सुख अरादन दुख अरादन, बिसरे ना काहू बेरा, नाम जपत कोट।

तौ सगल मोहे मोहियो तौ शरण परयो गुर पाग कर कृपा टहल हर लायो तौ जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जाओ संत पेटे वड पाग जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरनी चित लाग जैत श्री मैला पंजवा मन में सतगुरु ध्यान तरा

डरा आयो दुख हरण शरण करुणा पत गयो चरण आसरा। नाव रूप पयो साध संग पवनिद पार परा अपियो पियो गत कियो परमा कहो नानक अजर जरा। जैत सरी महला पंजवा।

अलेपा ने व्यापे उन माई एक रंग तत के बेते सतगुर ते बुद्ध पाई दया मया कृपा ठाकुर की से संत सुभाई तिनके संग नानक निस्तरी है जिन रस रस हर गुण गाई जय श्री महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण तन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे में दीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा प्रभु प्रीतम चरण कमल अनूप

काढ़ लेहो नानक अपने को संसार पावक के कूप। जैसरी मैला पंजवा कोई जन हर स्यों दे वै जोर चरण गहो बको शुभ रसना दीजे प्राण अकोर रहाओ मन तन निर्मल करत क्यारो हर सिंचे सुधा संजोर या रस में मगन होत कृपा ते मां बिखिया ते तोर। आयो शरण दीन दुख भंजन चित

जवा चात्रिक चितवत बरसत में कृपा सिंध करुणा प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ अनक सुख चकवी नहीं चाहत अनद पूरन पेट देह आन उपाव ना जीवत मीना बिन जल मरना ते हैं हम अनाथ नाथ।

को पाई तिन रस पियो पारी काकी कीमत कहन न जाई कुदरत कवन हमारी। लाए लए लड़दास जन अपने उदरे उदरन हारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे। जैत श्री मैला पंजवा आए अनक जन्म प्रम सरणी उदर देह अंध कूप ते लावो अपनी चरणी रहाओ। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत के अंचल लावो बिखम नदी जाए तरणी। सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन में तरणी हर दर्शन तृप्त नानक दास पावत हर नाम रंग अपरणी। जय श्री मैला पंजवा हर जन सिमरो हिरदे राम हर जन को अपदा निकट न आवे पूरन दास के काम रहाओ। कोट बिघन बिनसे हर सेवा नेचल गोविंद काम भगवंत भगत को पौ किछ नाही आदर देवत जाम। तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हिरद

फूलियो मन माया पुरजायो, जो जो कर्म कियो लालच लग, ते ते आप बंदायो रहाओ। समझ न परी दिखे रस रचियो, जस हर को बिसरायो, संग स्वामी सो जानियो नाहिन, बन खोजन कौटायो। रतन राम कट ही के भीतर, ताको ज्ञान न पायो, जन नानक भगवंत भजन बिन, बिरथा जन्म गवायो, जैसरी महला नामा, हरजू

आओ महापतित मुग्ध लोभी सुन करत पाप अभारा तै मरबे को विसरत नाहिन तेह चिंता तन जारा। किए उपाव मुक्त के कारण जह दिस को उठ धाया

नानक हार परयो शरणागत अभय दान प्रभु दी जय जय श्री महला नावा। मन रे साचा गहो बिचारा राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो ए संसार आ रहा जा को जोगी खोज तुहारे पायो ना इतने पारा हो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा पावन नाम जग तुम्हें हर को कभू ना संभारा नानक शरण परे।

बरसन प्यासी दिन सुरात चितवो अन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत संत

हौ किस चिते या हिक दू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा तिना देख मन चाओ उठंदा।

ने पाया आप गवाया जय तन पाग मथाने बहा पकड़ ठाकुर हो खिद्दी गुण अवगुण ना पछाने गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किछ सुहंदा जन नानक तन सुहागण साई जिस संग पतार वसंदा यार वे नित सुख सुखेंदी सा में पाई वर लोड़ींदा आया वजी वधाई मां मंगल रहस थिया फिर दयाल सद नवरंगिया वड पाग पाया गुर मिलाया साध कै सतसंगिया आशा मनसा सगल पूरी त्रै अंक अंक मिलाई बिनवंत नानक सुख सुखेंदी।

सतगुर प्रसाद। श्लोक ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन न जाए अकथ, नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ संत। जो जानो त्यों राख हर प्रभ तेरिया, केते गनो असंख अवगुण मेरिया। असंख अवगुण खते फेरे नित प्रत सद भूलिय, मोह मगन विकराल माया तो प्रसादी कूलिय। लूक करत विकार बिखड़े प्रभ नेर हूते नेरिया, बिनवंत नानक दया तारो काड पव जल फेरिया। श्लोक निरत न पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाओ, नानक की बेनंतिया मिलेन थावे थाओ चंत। दूसर नाही थाओ का पह जाई है, आठ पैर कर जोड़ सो प्रभ त्याई है। त्याए सो प्रभ सदा अपना मने चिंदिया पाई है, तज मान मोह विकार दूजा एक क्यों लिवलाई है। अर्प मन तन प्रभु आ गए आप सगल मिटाई है, बिनवंत नानक पार कृपा साच नाम समाई है। श्लोक रे मन तासो त्याई है, सब विद जा के हाथ राम नाम तन संचिय नानक निभ है साथ संत। साचियरा प्रभ एक दूसर नाहे कोए, थान संतर आप जल फल पूर सोए। जल फल मैयल पूर रहा सर्वदाता प्रभ तनी, गोपाल गोविंद अंत नाही बे अंत गुणता के क्या गनी। पज शरण स्वामी सुख गामी तिस बिना अन नाहे कोए, बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होए। श्लोक चित जे चित व्या सो मैं पाया, नानक नाम त्याए सुख समाया संत। अब मन छूट गया साधु संग मिले, गुरमुख नाम लया ज्योति ज्योत रले। हर नाम सिमरत मिटे किलबिक बुझी तप्त अगान्या, जय पुजारी ने दया की ने अपने कर मान्या। ले अंक लाए हर मिलाए, जन्म मरना दुख जले। बिनवंत नानक दया तारी मेल लीने एक पले। जैतरी छंत मैला पंजवा, पाधानो संसार गर्भ अटिया। करते पाप अनेक माया रंग रटिया, लोभ मोह अभिमान बूढ़े मरण चीतना आवे। पुत्र मित्र व्यवहार बनता ए करत बिहावे। पूज दिवस आए लिखे माए, दुख धर्म दूते दिखिया। किरत कर्म ना मिटे नानक, हर नाम तन नहीं खटिया। उद्यम करे अनेक हर नाम न गावही, पर मैं जोन असंख मर जन में आवही। पशु पंखी सैल तरवर गणत कछु ना आवे, बीज बोस भोग पोगे किया अपना पावे। रतन जन्म हारंत जुए प्रभु आप न पावही।

लिए प्रभ मेल दूजे भाई हुई। गुवाच के गुवाची कहा क्योंकि दूजे भाई भी फंस गए। दोनों ही तो जन्म दिता से दूजे भाई ने भादो है धर्म भुलानिया दूजे लगा है मैं कर रहा सब पिछले दिहाड़िया लड़ी जोड़न लर्ज करा मूल रूप विच शीतल का प्रभु है निरंकार है ते तपत संसार है आतिश दुनिया खुनक नाम खुदाया मूल जोड़ने चाहिए ते जिन्ने महीने बदलते ने जिन्निया रुत्तां बदलदियां ने इस सारिया इन्हां दो चीजां ते ही आधारित ने जिन्ना जिन्ना धरती का हिस्सा सूरज के अग के नेड़े तपत के नेड़े तुरिया जांदा उन्नी गर्मी बढ़ जांदी रुत बदल दी जांदी जिन्ना सूरज तो दूर होके रहिंदा उन्नी शीतलता प्राप्त होती है। एक पासे निरंकार है एक पासे संसार है इउ मनुख के जीवन दिया अंदर दिया रुत्तां बदल दिया ने। गुरु ने फरमाया कह लगे इस बार दे सूरज नाल मेरा कोई संबंध नहीं है रुत्तां बदल दिया रहनिया ने ते सूरज ते निर्भर ने। कह लगे मैं सवारना चाहना अंदर का बारह मां क्योंकि अंदर भी कोई रुत्तां बदल रही है। जिन्ना जिन्ना मनुख संसार के पदार्थों की तपत रूप विच ग्रिप विच आई जांदा है रुत बदल जांदी है तपदा है जियो तपत है बारो बार तप तप खपे बहुत बेकार। ते जिन्ना अंदरली हाउ रूपी सूरज तपत नालों दूर रहिंदा है ते निरंकार नाल जुड़िया रहिंदा है शीतलता नाल त्यों त्यों इस रुत तो तपत तो बच जाता है। अगे जाके हर की तपत तो तर्रा के जेठ हाड़ दी तपत तो तर्रा के मेदनी अरदास कर दी ते मेदनी का मालिक अरदास सुन के बदलां नू गुरु रूप बदलां नू हुक्म करदा जाओ नाम रूपी बरसात करो अंदर दबारा मां नाम रूप बरसात करो। गुरु बख्शिश करके जदों धर्म की नाम रूपी बरसात करद फिर भी इस हौ कोलों तपत कोलों बर्दाश्त नहीं होंगी ते वो अंदर ला फेक जरा अंदर समोई बैठी होंगी ना तपत उन्हों भादों विच बाहर कढ दिंदी कट दी है धर्म के बराबर खड़ा करके भरम धर्म से भरम दो आम उस सामने खड़े हो जाते हैं भादों उसनू कहते हैं जदों दो भा खड़े हो जाए भा दोए भरम भुलानिया भुलन का चांस भी उत्थे होंदा जिथे एक नहीं दो राह हो एक पासे धर्म है एक पास उसके की नकल भरम है मिक्स हो गए ने मानो ठंडिया बूंदा की शीतलता तपते सूरज की समा बैठी इस मेदनी विच धरती विच गर्मी दोनों मिक्स हो गई भादों का महीना की होंगे जिथे दो चीजा मिक्स हो जाए बारिश धरती दा वो हिस्सा जेड़ा सुख सुख के धूल बन चुका होवे दोनों मिलके चिक्कड़ बन जाते
ਸਾਜੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਰਦੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਪਤ ਦੇ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਧਰਮ ਲਈ ਵਿਲਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਭਰਮ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੀ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਟੂਟ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਦੰਬੀਹਾ ਬੋਲੇ ਭੁਜੰਗਮ ਫਿਰੇ ਦਸੰਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਦਾਦਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਪ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਲਾਬ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੱਛਰ ਡੰਗ ਸਾਲ ਭਰ ਸੁਭਰ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਹੀਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੁੱਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੌੜ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਪਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਦੌੜ ਵੱਜੀ। ਇੱਕ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਤਪਤ ਨੇ ਵੀ ਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਭੜਾਸ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਸਰਦੀ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅੱਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ

0: मन तन प्यास दर्शन घनी, मन तन प्यास दर्शन घनी, कोई आन मिलावे मा।
1: अभी पूछ रहे हैं प्रेम पैदा होएगा, तभी पूछेगा। जिसके मन में शौक ही नहीं वो राह क्यों पूछेगा। हेलो, गुरु नाल जुड़न का सब तो पहला तरीका, जदों हिरदे विच प्रभु मिलाप का प्यार उमा प्रेम पैदा होएगा, तांग पैदा होएगी, चाओ पैदा होएगा, फिर गुरु को आके पूछेगा, तां गुरु नाल जुड़ेगा।

जिल्ला सबैलाई होइन कि उपराले सुन खोजन आलस लगाएगा गुरु मददगार होएगा तेरी बाँ फाड़ लेगा कदम तेरे चलने के दिखा गुरु देगा बस आ फर गुरु काम करता दिशा देने का गुरु दिंदा है रास्ता गुरु दिंदा है डायरेक्शन पर तेरे कदम में तू सुस्ती निकल जाए तेरे पैरों में तू आलस निकल जाए ते आलस की छा आ जाए उमा लालसा जरा प्रेम नाल पैदा हो जाए आलस जाएगा लालसा नाल ही जिन्नी देर लालसा नहीं होएगी आलस नहीं जाएगा इसलिए गुरु ने आख दिता कह लगे हो पर यार जे लालसा करने ते आलस क्यों आलस ते उमा दो बिल्कुल विरोधी शब्द ने जिथे उमा होवे उथे आलस नहीं हुंदा जिथे आलस होवे उथे कोई उमा चाओ नहीं हुंदा गुरु ने आख दिता संत सहाई प्रेम के जदों तेरे मन अंदर प्रेम दा उमा पैदा होवेगा गुरु तेरी बाँह फड़ लेगा सहायक होएगा

पूरी तरह समझाना। एहू जो तू रवा फड़ना है, गुरु उपदेश ही तो एक ऐसा पल्ला है जिंदे पल्ले नाल लग के तू मंजिल तक पहुंचना। गुरु उपदेश तेन समझाएगा, आखेगा भलिया जे जेठ हड़ दिया तप्तों का सताया हो, जे भादों के भरम दिया भुलाणियों का परेशान होके पछता के आए, तो मैं तेन यकीन दिवाना इको प्रभु मिलाप ही है जिथे सुख ने होर किसी दूजी दुनिया के नहीं मिल सकते।

0: जिन्नी चाख्या प्रेम रंग
1: रज गए। उन्हें दी तपत जो कि भुख नू ही तपत भी आख दे, तृष्णा नू ही तपत भी आख दे।
0: जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम त्रिनावे राम राजे शीतलता के नेड़े रह जाता। उनका नतीजा की हुंदा किसकी? कृष्ण भुख सब इतने कृष्ण भी तो एक तपत है। लिव छुटकी लगी कृष्ण माया अमर बताया कृष्णा गिरने की पूजी है कोट जोरे लाख करो रे मन न हो रे परे परे ही को एक ऐसी आते जड़ी पूछ नहीं। पर दिल कहते ने जेड़े प्रेम राशि चख लेंदे ने प्रभु मिलाप के नेड़े होंगे ने नाम का साधन अपना ने वो सब तो पहला उन्होंने अग बुझी। तृप्त रहे आगार आप त्याग बिनती कर उन्होंने अंदर की अवस्था फिर की होंगी। जो त्रिपत गए रज गए पदार्थों की आशावान की भुख ना रही इस पहले नालों पिछले जरा मुड़िएगा कि पिछले श्लोक में भी गुरु ने आख्या संत में भी आख्या गुरसिखा मन हरप्रीत है हर नाम हर तेरी राम राज कर सेवें पूरा सतगुरु भुख जाए लहे दे गुरसिखा की भुख सब क्योंकि राज जरा संतोख जरा वो धर्म है। धर्म ने टिकना संतोख भी थावे तो अधर्म ने जन्म लेना भुख भी क्यों जो प्रेम आना है उदो भुख मिटनी है त्रिपत आनी है रज आनी है जो रज आना है संतोख आना है उदो संतोख के मालिक ने आ जाए। गुरु ने यह ख्याल दिता कह लगे जो अंदर रज से संतोख आ जाता है ना उदो मनुख के अंदरों परमात्मा मुखातब कर एको ही लफज निकलते हैं हे मालिक मैनू हुण होर किसी चीज की लोड़ नहीं। त्रिपत रहे आगार आप त्याग बिनती करें उस बिनती में तो दुनिया के पदार्थों की मांग होती है जो अंदरली अवस्था रुत बदलती है ना उदो आप यह सारा आडंबर है प्रभु के मेरा उदो अंदरली अवस्था बदलने नाल प्रभु को आउंदा गुरु को आउंदा कोई घर के परिवार के जीवन दी सारियां लोड़ां दी लंबी लिस्ट लैके नहीं आउंदा उदो उनकी बेनती भी इक्को लफ़ज़ हुंदे सी

0: नानक हर करना।
1: हुण उन्हां दी बेनती दे ए लफ़्ज़ उन्हां दे अंदर दी ए चाहत है, हे मालिक तेरे दर नूं छड के मैं हुण किते नहीं जाना, क्योंकि मैनू पता लग गया है अस्सू दा महीना सुखां दा उन्हां लई आउंदा, भाव अंदरले जीवन दी बदलदी रुत उन्हां दी ही सुखी हुंदी है जिहड़ियां जिन्हां ते तू रहमत करें। इसलिए मेरी बेनती विच हुण केवल तेरी रहमत मंगण दा सवाल ही है। गुरु कहिंदे

संसार भी तपत तुम परेशान हुए हैं। तू भोग के देख ली ए तपत, तू हंडा के देख ली ए तपत, जिन्हें सर्दियां दियां पो मांग दियां रातां विच भी तैनू तपाया है, जिन्हें एसी रूम विच बैठे होया शिमले दियां पहाड़ियां ते गया होया हिमालिया पर्वत दियां चोटियां ते भी तेरे अंदर दी तपत नहीं बुझाई, तू ऐसी तपत नू हंडा लिया जे खार दी नू, तू परमा दे पटकना नू भी चंगी तरह परख लिया है, इसलिए हुन आ अंदर कोई प्रेम दा उमाहड़ा पैदा कर, कोई अशु कत्तक दा ओ अडंबर पलिया भरिया अंदर समा आवे, अंदर दी रुत बदले अशु कत्ते आए ते तू ऐसे प्रेम दे उमराल उपराले ते उत्साह पैदा करे, जेड़ा प्रेम तैनू प्रीतम दी शीतलता दे लड़ ला दे। गुरु एह आखदे ने कहंदे ने

संगमत्यां करे वह इंद्राद भगत प्रहलाद को आत्मरस जन जानिया काव काल सुजा सुजा वो गुरु नानक राज जोग जन मानिया जबलो नहीं भाव लिलारी उदय तबलो भ्रमते फिरते बहतायो काल घोर समुंदर में बूढ़े कब हूं मत है नहीं ने पछतायो

तो फिर गर्भास न परियारे कहां बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी वर्ण सक महिमा जो तिहारी।

परम सत्कार योग सतगुरां दी साजी और नवाजी होई, सतगुरां दे पावन चरण कमल सो प्राप्त स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब की धरती ते बड़े ही अदब सत्कार दे नाल जुड़ बैठी अते चढ़दी कला टैम टीवी दे राही देशां परदेशां दे विच आपो अपने घरां विच बैठ के इस पावन सतगुरां दी गुरबाणी कथा कीर्तन दा आनंद माण रही गुरु रूप गुरु खालसा सात संगत जी आओ सर्व विचारां दी सांझ तो पहला सतगुरां दी बख्शिश कीती होई पावन पवित्र गुरफतेह दी सांझ करिए। कोई भी रसना वांझी ना रहे, बड़े अदब सत्कार नाल धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं सीस झुका के सारिया ही संगतां मिल के रज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ी रहमत होई है सतगुरां दी, धन गुरु ग्रंथ साहब सचे पातशाह महाराज जी के पावन चरणा कमलों विच सुंदर दरबार विच अमृत वेले जुड़ बैठन का समा सानू प्राप्त हो रहा है। ते वड़े भागां दी निशानी है, गुरबाणी का वचन है साई घड़ी सुलखणी सोहनाल विहावे। सतगुर के चरणा कमलों विच जुड़ बैठना ते गुरबाणी गुरमत विचारां नाल जुड़ के अपने समय के सवासां नू सफलियां करना, ये वड़े भागां दी निशानी है। गुरबाणी दे महावाक ने पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगट है भेटियो पुरख रसक बैरागी मेटियो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी। जन्मा जन्मांतरां दे पाप कर्म जन्मा जन्मांतरां दा चक्कर और लोग परलोक दे दुख दलिद्र जेड़े आ सतगुर सचे पातशाह दे चरणां विच जुड़ बैठण दे नाल सतगुर की गुरबाणी सतगुर के उपदेशां सिधांतां नूं संदेशां नूं कमाउण दे नाल दूर हो जांदे कटे जांदे। ख्याल करना गुरमुख प्यारे, सतगुर सचे पातशाह ने साडे ते बड़ी वड्डी रहमत कीती है, बड़ी वड्डी बख्शिश कीती है कि सानू सतगुर सचे पातशाह महाराज के द्वारे ते जुड़ बैठन दा गुरबाणी गुर इतिहास गुरमत विचारां नाल जुड़न दा सुभाग समा प्राप्त हो रहा है। ख्याल करना सतगुरु सचे पातशाह महाराज ने बहुत वड्डी महान बख्शिश महान बख्शिश साडे उपर कीती जो असी गुरु घर दे विच, क्योंकि ख्याल करना ये गुरुद्वारे गुरु के स्थान साडे लई जीवन जाच दा केंद्र है, गुरबाणी ज्ञान दा केंद्र है, गुरु के सिद्धांतां उपदेशां दा केंद्र है गुरुद्वारे जो सतगुर सचे पातशाह ने सानू बख्शिश कीते। जिथे भी सतगुरां ने सरगुण स्वरूप विच चरण पाए और जिथे भी कोई इतिहासक वाकयात वापरिया, अज गुरु नानक साहब सचे पातशाह तो लै करके दशमेश पातशाह महाराज तक और सिंघां शहीदां दे गुरु के प्यारियां दे पावन गुरधाम गुरद्वारा साहब सुभाएमान है और जिथे धन गुरु ग्रंथ साहब सचे पातशाह की पावन बाणी का प्रकाश है। एक ओंकार तो लैके 18-20 तक धन गुरु ग्रंथ साहब सचे पातशाह की पावन बाणी साडे सतगुरां संतां भगतां गुरसिखां द्वारा उचारण कीती हुई, जेडे परमेश्वर नूं प्रवान होए, जिन्हां दे हिरदे निर्मल हो गए और जिन्हां नूं इलाही इलहाम होया ते संसार दे भले खातर उन्हां ने इस बाणी दा उचारण कीता। वाहु वाहु बाणी निरंकार है तिस देवड़ अवर ना कोई, इह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। ओ पावन बाणी जो गुरुद्वारा साहब दे अंदर प्रकाशमान हो के जो कथा कीर्तन दे राही पाठ दे राही शब्द विचार दे राही जिस पावन बाणी दे नाल असी जुड़दे हैं, ये वड्डी रहमत कीती है साडे सतगुरां ने।
गुरु नानक साहब सचे पातशाह संसार विच प्रगट होए चार उदासियां करके महान यात्रावां करके सतगुरु सचे पातशाह ने जो लुकाई नूं उपदेश बख्शिया जिथे जिथे सतगुरु सचे पातशाह महाराज गए उथे धर्मशाला की रचना कीती। धर्म की जगह मनुखता नूं कादर ते कुदरत का ज्ञान बख्शिया। वहमा भरमा पखंडा कर्मकांडा च पए लोहे लोगां नूं सच्ची बंदगी दे नाल उस वाहिगुरु अल्लाह खुदा दी बंदगी दे नाल गुरु नानक साहब सचे पातशाह ने जोड़ना कीता। और जिन्हां संगतां एकत्र होणियां उन्हां नूं गुरबाणी दे शब्द जो सतगुरां ने पावन बाणी उचारण कीती, फिर सुबह शाम उस धर्मशाला जो धर्म की जगह रची जांदी धर्मशाला वो धर्म की जगह दे विच सुबह शाम संगत ने जुड़ना जा जदों भी समा बने तो उसे सतगुर की पावन बाणी के शब्दों की विचार शब्दों का जाप सिमरन करके अपने पुन भाग बनाने अपने जीवन नूं सफल करना। भाई गुरदास जी के वचन बाबे तारे चार चक नौ खंड पृथ्वी सचा ढोवा, चार चकां विच सतगुर सचे पातशाह ने नौ खंडां दे अंदर जो गुरबाणी दा उपदेश जो इलाही इलहाम लैके सतगुर सचे पातशाह संसार विच आए ते विचारिया, जैसी मैं आवै खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। जो खसम की बाणी इलाही बाणी धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच बखाना। उस पावन बाणी का प्रचार और धर्मशाला जगह रच दित्तियां सतगुर ने। ख्याल करना सतगुर सचे पातशाह धर्मशाला रचन बाबत जेडे उस वेले दे राजे महाराजे लोग सन जां तलाड लोग सन अमीर लोग सन उन्हां नूं सतगुर सचे पातशाह ने सवावां ते किरती लोगां नूं इकट्ठे होके अपनी दसवंद किरत कढ के नेक कमाई दे विचों धर्म की जगह रचनी। दस पातशाहियां तां गुरमुख प्यारे धर्म सलावां और फिर जदों सतगुर सचे पातशाह दी रब्बी बाणी उचारण कीती होई एकत्र होई और वो पावन बाणी दा सरूप जिस वेले तैयार होया ते फिर जिथे गुरमुख प्यारे सतगुर दी पावन बाणी दे सरूप सुभायमान हो गए वो धर्मशाला जिहड़ी सी वह गुरद्वारे दे अंदर तब्दील हो गई, वो धर्म दी जगह गुरद्वारा बन गई। और जिथे जिथे सतगुर ने चरण पाए गुरु साहब आप सुभायमान हो गए। गुरुद्वारे का अर्थ ही है गुरु का द्वारा, गुरुद्वारा तो जिथे गुरु आप सुभायमान है वो गुरुद्वारा। माफ करना वो हर जगह भावे वह गुरमुख प्यारे कच्ची कखा कानिया की कुली है, चाहे वह कच्चा मिट्टी का स्थान है, चाहे वह संग मरमर लगी है और चाहे उथे सोने के पत्रे चढ़े हुए है। गल इस दी महत्ता नहीं, बिल्डिंग दी महत्ता नहीं, महत्ता है गुरु ग्रंथ साहब सचे पातशाह गुरु आप सुभायमान है जिथे उसनू गुरद्वारा ते जिथे सतगुरां ने चरण पाए कोई इतिहासक वाकयात वापरिया उनू इतिहासक गुरद्वारा। हिस्टोरिकल प्लेस जिथे जाए वह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे, गुरसिख सो थान भालिया लै धूर मुख लावा। जिथे जाए वह मेरा सतगुरु, जिथे भी सतगुरां ने चरण पए सा धरत पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए से जंत पए हरियावली जनी मेरा सतगुरु देखिया जाए। जिथे सतगुरां ने चरण पाए इतिहासक गुरुद्वारे हिस्टोरिकल प्लेस ये महान संस्था गुरुद्वारा साडे सतगुरु ने सानू बख्शिश कीता। अज लखां लोग इस गुरुद्वारे विच आके सतगुरु दे दर्शन उपदेशां तो जाणू हुंदे है, दर्शन करके पुन भाग बणाउंदे है और सतगुरु दी गुरबाणी कथा कीर्तन गुरु दे उपदेश विचार नाल जुड़ के अपने तर्ज जिंदगी अपनी जीवन चरिया जीवन जाच सिखदे है सतगुरु दी बाणी तो। ख्याल करना गुरमुख प्यारे अज दुनिया च जिथे इतिहासक गुरुद्वारे है हिस्टोरिकल प्लेस है उत्थे बहुत सारे नगरां पिंडां शहरां दे विच गुरुद्वारे बने है। ते दास बेनती करेगा साडा गुरुद्वारा जिथे असीं इमारतां वाले पासे ख्याल देने है उत्थे सानू गुरु दे सिधांतां वाले पासे ख्याल देना चाहीदा कि जिथे भी गुरु का अस्थान है
ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੂਰਨ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜੋ ਨਿੱਤ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਤ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰਨ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਭ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆਏ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਗਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ ਦੁੱਖ ਪੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ ਦੁੱਖ ਪੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਖ ਮਨਾਏ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਸਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਗਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੀਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਸਰੀਰ ਜੁੜਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਆਥਣੇ ਸੁਖਾਸਣ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਸਰੀਰ ਜੁੜਦੇ ਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਸ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਧੜਾ ਧੜ ਜਾਤਾਂ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਸਰੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਸਰੇ ਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਓ ਸੋਹਣੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਓ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਨਗਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਸਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚਾਹੇ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁਖਾਸਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਰ ਸੁਖਾਸਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੁਖਾਸਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਾਸਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ
और नाले घंटिया बद्धी काम कार करके जो बिजनेस की खातर विदेशों में गए है बारह बारह घंटे चौदह चौदह घंटे खड़े पैर काम करके भी और गुरु के सिख फिर समा कटते हैं कि असि सतगुर के प्रकाश वेले पहुंच जाइए सुखासन वेले पहुंच जाइए कथा कीर्तन वेले गुरु के द्वारे से पहुंच जाइए। हजार सिख सैकड़े सिख गुरमुख प्यारे सतगुर सचे पातशाह के चरणों च सुभावान होंगे है पर दुख न कहना पैदा साढ़े देश में पता नहीं की हो गया इन्नी मनमत फैल गई है और गुरुद्वारे माफ करना बहुते गुरुद्वारे तो ग्रंथियों तो सखने पे वेले पे गुरुद्वारा से बन गया पर ग्रंथी सिंह नहीं है। तिदास बेनती करेगा उचे जिथे साडा आम सिखां दा कसूर है उथे साडियां जिम्मेवार संस्थावां जिन्हां दी धार्मिक जिम्मेवारी बनदी सी उन्हां संस्थावां ने धार्मिक जिम्मेवारियां तो मुख मोड़ लिया ते उस गंदी गंधली सौड़ी सियासत दी राजनीति दी भेटा चढ़ गईयां ने उन्होंने सारा जोर जेड़ा सियासत वाले पासे कुर्सी वाले सत्ता प्राप्ति वाले पासे ला दिता गुरुद्वारियां च गुरमर्यादा ते सिखी दे प्रचार प्रसार की गल आज जिहड़ी है गुरमुख प्यारे उन्हां तो नहीं हुई और जिहड़ी साडी श्रोमणी संस्था जिसनूं असीं पूरे पंच ने शहादतां दे के शहीदियां पा के होंद विच लिआंदा सी गुरमुख प्यारे और जिहड़ी संस्था दे आगू लोग अज पूरे विश्व दे सिखां दी नुमाइंदगी दी गल करदे आ पर माफ करिओ उहनां तों संभालिआ पंजाब वी नहीं गिआ पंजाब दी वी गल छड्ड दईए गुरमुख प्यारे उहनां ने अमृतसर साहब दा आला दुआला भी नहीं संभालिआ जिथे हैडक्वार्टर मुख दफ्तर अज जदों असीं सरहदां वाले पासे जाने चाहे वह गुरदासपुर जिला चाहे अमृतसर साहब का जिला ते बहुत सारे सिख जेड़े गुरमुख प्यारे गुरमत प्रचार तो सखने जिन्हां नूं होर गैर लोगां ने झूठे सबजबाज दिखा के लालच दिखा के ते बरगला के सिखी तो गुरु घर तो तोड़ के ते मनमत दे राहां ते तोड़ ले पिंडां दे पिंड घरां दे घर परिवारां दे परिवार तब्दील कर दिते पर साडी श्रोमणी संस्था घूक सुती पई है उसका ख्याल ही नहीं वो आगू लोग सियासत दे विच डुबे पए है वो अपने आकावां नूं खुश करन ते लगे हुए है वो अपने आकावां नूं अवार्डां ते अवार्ड देण ते लगे हुए दस ते हैरान हुंदा है। पंजाब विच पतत पुणे दी लहर है पतत पुणा बहुत वड्डी पद्धर ते फैल चुके है कि उन्हां लोगां दी प्राप्ति है जिन्हां नूं अवार्ड दिते जा रहे सानू कोई इतराज नहीं किसी की गुरमुख प्यारे सेवा से अवार्ड दिता जाए माण सन्मान हमेशा पंथ दिंदा रहे है पर जिस दियां प्राप्तियां ने प्राप्तियां की ने गुरमुख प्यारे प्राप्ति तो 1% भी नहीं है नुकसान इन्ना वड्डा अवार्ड वड्डे वड्डे है सन्मान वड्डे वड्डे है कि उन्हां लोगां दी इह प्राप्ति है कि गुरुद्वारे ग्रंथियां तो सखणे है कि यह प्राप्ति है कि पंजाब विच पतत पुणे की लहर है कि यह प्राप्ति है कि थां थां पिंडां शहरां विच नशियां दे ठेके शराब दे ठेके खुल गए है और जिहड़े होर बहुत सारे नशे जिहड़े है वह पंजाब दे विच नौजवान नशियां दा आदि हो गया कि यह उन्हां लोगां दी प्राप्ति है जिन्हां नूं सन्मान दिते जा रहे देहधारी गुरु डम दे डेरे थां थां ते खुल गए पखंडवाद दा प्रसार हो रहा है और सिखी नूं दबाया जा रहा है सिखी नूं कुचलिया जा रहा है कि यही उन्हां लोगां दी प्राप्ति है जिन्हां नूं सन्मान दिते जा रहे वह श्रोमणी संस्था अवेसली हो गई है इस पासे ख्याल ही नहीं है एक चापलूसा वाली जिंदगी जिहड़ी है अहुदेदार लोग जीव रहे है अरदास बेनती करे सतगुरु सचे पातशाह ने ते सानू गुरमर्यादा बख्शी सिद्धांत बख्शिया और सानू मुरीद बनाया ते गुरु के अज सियासी लोगां दे मुरीद बन गए अज आकावां दे मुरीद बन गए है ते अगों उपदेश की है उन्हां अहुदेदारां दा जे किते उन्हां नाल विचार गोष्ठी होवे ते उपदेश की दिंदे ने अंदर बैठ के कहिंदे देखो सानू कौन जाणदा साड़ी की कुर्बानी असी सिख पंथ लई की कीता कुछ भी नहीं ते साडे आका दी साडे ते मेहर भरी निगाह हो गई ते देखो अज असी पंथ दे सन्मान योग अहुदियां ते बैठे हैं वो कहिंदे सानू पंथ ने नहीं बिठाया सानू साडे सियासी अकावां ने बिठाया ते असी क्यों ना उन्हां दे दास बणीए असी क्यों ना उन्हां दे जी हजूरीए बणीए
माफ करना जो अहुदेदार लोग गुरु के मुरीद घट ते सियासी लोगों के अपने अकावां के अपने आगुआ के मुरीद वध बन गए है। तो गुरसिखी का प्रचार की होगा, प्रसार की होगा? गुरुद्वारिया के अंदर गुरमुख प्यारे हो जो सतगुरु ने गुरुद्वारे की सानू बख्शिश की थी, जिथों गुरु के सिद्धांतों का प्रचार से प्रसार होना सी, अज उन्होंने पाबंदियां ने प्रचार कर भी नहीं दिता। सिख जाता सिखी के सिद्धांतों की गल लैके चलो पाबंदियां लग जा, गुरु के सिद्धांतों की गल लैके चलो रस्ते रोक दिते जाते, आवाज बंद कर दिती जाती है, तरह तरह के फतवे जारी कर दिते जाते हैं। जे गुरु के सिद्धांतों की गल लैके चली पखंडवाद का फैलारा किया जा रहा है, साडा दुखांत है। पर दास बेनती करेगा गुरु के सिखो अज सानू जागना पवेगा, अज सानू खुद जिम्मेवारियां संभालनिया पैणगियां। अज गुरु की महान संस्था गुरुद्वारा गुरु की बाणी अदब ते सत्कार उपदेश ते संदेश सतगुर दे गुरबाणी का प्रचार ते प्रसार ये सानू खुद नू ड्यूटियां संभालनिया पैणगियां। हर सिख कमर कसा करे, हर सिख इस पासे ख्याल देवे ताकि जिहड़ी अरदास असीं नित करदे खालसे के बोल वाले वह खालसे के बोल वाले हो सकन। ते माफ करियो गुरमुख प्यारियो, सानू किसी तरह की घबराहट च नहीं पैना चाहिए, सानू किसी तरह के स्वार्था ते लालचां च नहीं पैना चाहिए।

डर घबराहट लखण की लोड़ नहीं, अज सानू जागण की लोड़ है। सतगुर जगा रे जाग लिहु रे मन जाग लिहु, कहां गफल सोया क्यों गफलता दी नींद विच सुता पिया। गुरु के सिखा जाग आ देख तेरे नाल की वर्तारा वरत रहे है, आ की कुछ हो गया, किडिया महान परंपरावां किडिया महान मर्यादावां और किन्ना बहादरी का खून न लिखिया तेरा इतिहास, पर तू अज किथे खड़ा इस गल की विचार कर। ख्याल करो गुरमुख प्यारियो, जदों आवाम जागद निजाम बदले जाते हैं, तुहाडे जागण की लोड़ है। आ जिहड़ियां गलत परंपरावां साडे पंथ विच धर्म विच पसर रहियां ने इह बदलियां जाणगियां, जेडे जोर ते जबर दी गल ताना छाइयां इह बदलियां जाणगियां। ताना साहां दे राज हमेशा नहीं रहिंदे। असी देखदे गुरमुख प्यारे 40 साल दे करीब तख्त ते बह के राज करन वाला लिबिया दे अंदर की होया तुहाडे सामने, मिस्र दे अंदर की होया तुहाडे सामने, दलीलां परमाण तुहाडे सामने, वरतारे तुहाडे सामने वरत रहे गुरमुख प्यारियो। दहाकियां बदी राज करन वाले लोग, ताना शाही चम दी जुतियां चलाउण वाले लोग, पर की होया जदों आवाम जागया निजाम बदल दिते गए। अज जदों तुसी जागोगे तुहाडे जागण दा वेला है, तुहाडे तुरन दा वेला है। इस पासे गुरमुख प्यारियो जागो, तुरो इस पासे नूं। ते ख्याल करना गुरु का अदब सत्कार भी बहाल होगा, गुरमर्यादा गुरुद्वारे का जो कंसैप्ट सतगुरु ने सानू दिता वह भी पूर्ण मर्यादा अनुसार बरकरार होगा। डरन की लोड़ नहीं, घबराहट की लोड़ नहीं, काली की भी लोड़ नहीं है। बड़े ठरमे दे नाल, बड़े सहज दे नाल, बड़ी अमन शांति दे नाल गुरु दे बचना ते पहरा देंदे हुए जदों असी इस पासे तुर पवांगे ते सतगुर सचे पातशाह की रहमत बख्शिश हो जाएगी। गुरु अर्जन देव सचे पातशाह महाराज का अज का फरमान जो बिहागड़ा राग के अंदर शहीदां दे सरताज धन गुरु अर्जन देव सचे पातशाह महाराज बचन कर रहे हैं, गुरमुख प्यारे वह भी सानू इसे पासे उपदेश दे रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब सचे पातशाह के 546 अंग के उपर जो सुभायमान शब्द का चौथा बंध जिस भी अज आप विचार कर जा रहे हैं, जिसका मूल पाठ सत्कारयोग सिंह साहब जी भाई साहब के पासों असी सरवण किया है, उसका पहला ही बचन जो सतगुरु अर्जन देव सचे पातशाह उच्चारण कर रहा, वह मनोबिरतियां एकाग्र चित करके सरवण करिए और जागीए इस पासे तुरीए, ताकि सतगुरु सचे पातशाह की रहमत बख्शिश दे असी पात्र बन सकी। और जिहड़ी नित अरदास करदे खालसे के बोल वाले, वो खालसे के बोल वाले हो सकन। किसी तरह के डर भय घबराहट की लोड़ नहीं, क्योंकि मारा रख है एको आप, जिन्हें वाहगुरु सचे पातशाह ने सवास बख्शे दुनिया की कोई ताकत खो नहीं सकती। ते जिदन वाहगुरु दे वलों सवास मुक गए, माफ करियो गुरमुखो, भावे राष्ट्रपति ते प्रधानमंत्री दे नाल लंच ते डिनर इकट्ठा खांदा होवे मनुख, उन्हों प्रधानमंत्री भी बाहों फड़ के नहीं रख सकता भी जमो छड़ जावे ते मेरा दोस्त है इनू मैं जान नहीं देना। किसी भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, गुरमुख प्यारे वड्डी ताकत का मालिक बाहों फड़ के रख नहीं सकता, क्योंकि जिनकी चीरी दरगाह पाटी तिना मरना भाई। जो वाहगुरु वालों सवास मुक गए दुनिया की कोई ताकत नहीं रख सकती, और जिन्ना चिर वाहगुरु के बख्शे सवास है गुरमुख प्यारे दुनिया की कोई ताकत खो नहीं सकती। ते गुरु अर्जन देव सचे पातशाह भी वचन कर रहे, तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम। सचे पातशाह वचन कर दे एवे मनुख भुलेखे च ज्यो रहा कि कोई होर वस्तु रख लवेगी, कोई दुनियावी ताकत रख लवेगी, कोई तागा ते तवीत कोई वहम भरम ते पखंड रख लवेगा, कोई रब दा शरीक बनिया देहधारी पखंडी गुरु सानू रख लवेगा। नहीं, सतगुरु सचे पातशाह कहिंदे उस वाहगुरु तो बिना, सचे सतगुर तो बिना कोई रखण वाला नहीं है। ये मनुख दे भुलेखे है, मनुख भुलेखे च ज्यो रहा, जे ऐसा उसका ख्याल है तां तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम। उस वाहगुरु सचे पातशाह तो बिना, अकाल पुरख तो बिना मनुख नूं रखण वाला कोई नहीं है। वाहगुरु सचे पातशाह ही रखण वाला है। पतत उदाहरण हर बिरद तुम्हारा राम। ते नाल ही वचन कीता सतगुरु अर्जन देव सचे पातशाह ने कि वाहगुरु पततां नूं उदाहरण वाला,
ਉਹਦਾ ਵਿਰਦ

भवे नाम पेख ऐसा नाम निरंजन होए। जे को मन मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान बंचे पावें दरगा मान बंचे सोहे हैं दर राजान बंचा का गुर एक ध्यान। जे को कहे करे विचार करते का करण नाही सुमार तौल धर्म दह का पूत संतोख साप रख्या जन सूत। जे को बुझै हो बस जार तबले उपर केता पार धरती होर परै होर होर दिसते पार तलै कवण जोर। जी अजात रंगा के नाव सबना लिखया बुढ़ी कलाम एह लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखया केता होए। केता दान सवाल रूप केती दात जाने कौन कूत कीता बसाउ एको कवाउ दिसते होए लख दरियाउ। कुदरत कवण कहां विचार वारा न जावा एक बार जो तुद पावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर राम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड़ हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए। असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख गाहे असंख निंदक सर करें पार नानक नीज कहें विचार। वारा न जावा एक बार जो तुद पावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव गम गम असंख लो असंख कहें सिर पार होए। अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सरसन जो बखाण। जिने लिखे तैस सिर नाहे जे फुरमाहे दिवत पाए जेता कीता देता ना हो बिण नावै नाही को थाऊं।

सुखे मूत बलीती कपड़ होए दे साबुण लिया होए परिया मत बाबा का संग ओ तो पहना वह कह रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख ला जा आपे बीज आपे ही खा नानक हुक्मी आव जा। तीरथ तप दया दत्त दान जेको पावे दिल का मान सुनया मनया मन कीता भाउ अंतरगत तीरथ मल नहाउ सब गुण तेरे में नाही कोए बिन गुण कीते भगत ना होए सो अस्त आत बाणी भरमाओ सत सुहावन सदा मन चाओ कवण सवेला वक्त कवण कवण थित कवण वार कवण से रुति मां कवण जित आकार वेल न पाइया पंडती जे हो वाले पुराण वक्त न पायो कादियां जे लिखण वे कुराण थित वार न जोगी जाने रुत मह न कोई जा करता सिर ठीक हो साजे आपे जाने सोई किव कर आखा किव सलाही क्यों वरण किव जाना नानक आखण सब को आख एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा कहो वै नानक जी कहो आप जाने अगे गया ना सोवै।

गायो गाहु लख वर वाच दिशा में गाहु पिछा को शीस नगायो गौ बदान को पूजत है बास कौ मृतान को पूजन दायो अकूर करे और जो सभी जग श्री भगवान को भेद न पायो।

राज नहीं कहूं फूल राजा हवा बैठा कहूं समट भयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए जाम पव आज जुगास रूप सुम पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख वार सिख संग्रो दुष्ट जिते उठ बद पाता सकल मलेश करो रण खाता जे अस तुज तब सरणी परे दिन के दोष्ट दुख हव मरे पुरख जौन पग परे त्योहारे दिन के तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नहीं आए हैं रक्षा हुई ताए सब काल दुष्ट रेष्ट डर तत्काल कृपा दृष्ट तन जहन हरहु ताके ताप तनक मोह हरहु रद सद कर्म सब होई दोष शास्व सक न कोई।

0: सुनते पुनीत कहते पवत सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लाग वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तूठा गुरु तुम सहरदास जीओ
1: ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ

सहरावासी फल पाया गुणकारी नानक साच मिलै वड्याई फिर घर सोहै नारी।

तीर्थ नावण जाओ तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। तीर्थ नावण जाओ तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दास पूर्व सदा दसारा। हाँ नाम हर का सदा जांचाओ देहि प्रभ तरणी तरा। संसार रोगी नाम दारू मैल लागै सच बिना। गुरवाक निर्मल सदा चानण मित सा नित साच तीर्थ मजना।

आराधे कंकार सचा नत दे चढ़ सवाया गात सांग मीता शांत सांग दय कर नजर मेल मिलाया कहन कहे सब को एक बड़े आखी है हाँ मूर्ख नीच अजान समझा साखी है साचे गुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा कूच कर है आवे मिखला दे शब्द सच है गुर मेरा आखण तोट न भगत भंडारी पर रहे आसोई नानक साज कह बेनंती मन मांजे सच सोई

आस्था पूर्ण करने वाले आस्था जी की वार जिस दे कीर्तन आप संगत ने सरवण कीते ने। जे कोई मन ला के आस्था जी की वार दे कीर्तन सुनदा है ते ओदी आस्था पूरी हो जाती है। आप सारी संगत ने आस्था जी के वार दे कीर्तन सुने ने। सतगुरु महाराज रहमत करन सारियां संगत दियां आस्था पूरियां करन

प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम दमाह समाए। प्रभ जी बसै सादकी दसना, नानक जन का दर्शन दसना। प्रभ को सिमरै से तनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते। प्रभ को सिमरै से जन प्रवान, प्रभ को सिमरै से पुरुष प्रधान।

नानक जन की मंगैर वाला प्रभु को सिमरह से पर उपकारी प्रभु को सिमरह सद बलिहारी प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे प्रभु को सिमरह तिन सुख बिहावे प्रभु को सिमरह तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरह तिन निर्मल रीता प्रभु को सिमरह तिन आनंद कने दे प्रभु को सिमरह बसे हर ने दे संत कृपा ते अन दिन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे प्रभु कै सिमरन कबूना चूरे प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सहस मानी प्रभु कै सिमरन हित चलयासन प्रभु कै सिमरन कमल बेगासन प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभु सिमरन कंत न पार सिमरै ते जन जिन को प्रमया नानक तिन जन सरनी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाए हर सिमरन

का नाम उहा संतोषा। जे पिंड है मां अंत गुब्बारा हर का नाम संघ उजियारा जहां पंक्ति रखो न सियानु हर का नाम तय नाल पछानो। जय मां भैन तपत पोकाम तय हर के नाम की तुम ऊपर शाम। जहां त्रिखा मन तुजा कर तय नानक हर हर बरख भगत जना की बर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट हर का नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर अवकसा गमात। हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नोदान मन तन रंग रते रंग कै नानक जन कै ब्रत बबिकै। हर का नाम जन को मुकत जुगत हर का नाम जन को त्रिपत भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब पर ना भंग। हर का नाम जन की वड्याई हर का नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाय ब्योग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजा हर हर देवा। हर हर जन कै मालक दीना हर तन जन को वा प्रभ दीना हर हर जन कै उठ सतानी हर प्रताप जन अवर ना जानी। ओत पोत जन हर रस राते सुन समाध नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुकत बहु कै नानक जन संकेत तरे पार जात हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम। सावते उत्तम हर की कथा नाम संत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत दिवसै संत प्रताप दुर्त समनसै। संत का संग वड पागी पाइया संत की सेवा नाम त्याइया। नाम तुल कथ अवर न होए नान गुरमुख नाम पावै जन कोई सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सब टडोल। पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदि जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान। योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सब त्याग बन मते प्रयान प्रकार किए बहु जतना पुण दान हो मैं बहु रतना। शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्तने करै बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार। नान गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरै त्रिजीव मां उदास पिसर थीव अग्न माह मत प्राण कनक सवह वर भूम दान। न्यौली कर्म करै बहु आसन जैन मार्ग संजमत साधन निमुख निमका सी कटावै तौ पीहो मैं मैल न जावै। हर के नाम सम सर कछ ना है नान गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ देश कै गर्भ गुमाना मन ते उठै। सोच करै दिन सर रात मन की मैल ना तन ते जात इस देह को बहुत सतना करै। मन ते कबू ना बिख्या टरै जल धोवै बहुत दे अनीत शुद्ध कहाँ हुए काची पीत।

पशुपति रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते कवन कृष्णानी जिन तू सासवारिया कर व्यगन मैं जिन उबारिया बार व्यवस्था तुझ प्यार दूध भर जोगन भोजन सुख सूत बिरद पै उपर साख सैन मुख प्याओ बैठ पौ दैन एह निर्गुण गुण कछु नाम बुझै बख्श लो तौ नानक सिजै जय प्रसाद हर उपर सुख बसै सुत प्रातमी बनता संघ हसै जय प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पावन पाव कमुला जय प्रसाद भुगै सवरता सगल समगरी संग साथ बसा दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना तिसै त्याग और संरचना ऐसे दुख मुड़ंद व्यापे नानक कार लेहु प्रभ व्यापे आदि अंत जो रखना।

इस पर हर चंदन लेट उतार सोए गर्दा प्रीत पसम संग हुए अंतकूप में पतत विकराल नान काट लो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक बिचारा कर दिन रात बाहर पे संतर मल माया छप सुनाए कश कर छिपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापक लोभ समान अंतर अगर बाहर तन स्वाहा गल पत्र कैसे त्रय अथाह जाप अंतर बसै प्राव्याप नानक ते जन सह समात सुनंदा कैसे मार्ग पावै कर गलो ओढ़ बहावै कहां बुजार बुझै डोरा निष्कय तो समझा पूरा काम विसन पद गावा गंग जतन करा तो पी सरभंग कै पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तू उस गवन करता हार करना मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाई सो अवै ना चीत जो बराई ता सो प्रीत बलुआ के ग्रह पीतर बसै अनंत केल माया रंग रसै दृढ़ करमा नै मन प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोक द्रोह यहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लो अपन कर करम तू ठाकर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा महसू कनेरे कोई ना जाने तुमरांत उचे ते उचा भगवंत सगल समगरी तुमरै सूत्र धारी तुम ते हो

नानक कहु ना सिजई बिन ना वै पत जाए। अष्टपदी दस बस्तूले पक्ष पावै, एक बस्त कान बिखुट गवावै, एक पीना दे दस पी हिरले तौ मूड़ा को कां करे। जिस ठाकुर स्यो नाही चारा, ताको की जय सत नमस्कारा, जा कै मला का प्रमिता, सर्व सूता हूँ मन उठा। जिस जाने अपना हुक्म बनाया, सर्व थूक नानक तिन पाया, अंतह अपनी देरास, सात पीत बरत अंदोलास। अपनी अमान कच बहुर सावले, अज्ञानी मन रोस करे, अपनी प्रतीता ही कोवे, बहुर का विश्वास न होवे। जिसकी बस्त तित्या कर रख है, प्रभु की आज्ञा मान मत है, उससे चौकन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनक भांत माया के हेत, सर्प होवत जान अनेत, बिरखी छाया स्यों रंग लावै, ओह।

को हाथ ना वह कहे। मन हर के नाम के प्रीत सुखदाई, कर कृपा दान काप लय लाई। मिथ्या तन धन कुटम सबाय, अमिथ्या हो मैं ममता माया। मिथ्या राजोबन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती अस वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पे कस्ता। मिथ्या क्रोह मोह अभमान, मिथ्या आपस ऊपर कर्त गुमान। अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जी वह हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह, मिथ्या हस्त पर तर्क कोई रह। मिथ्या नेत्र पिख वर्त रह रूपाद, मिथ्या रसना भोजन स्वाद। मिथ्या चन पर विकार कुता वह, मिथ्या मन पर लोभ लुभा वह। मिथ्या तन ही पर पुकारा, मिथ्या बास लेत विकारा। बिन बुझे मिथ्या सब पहले सफल दे, नानक हर हर नाम ले। बिरथी साकत की आर जा, साथ बिना कहो बत सुचा। बिरथा नाम बिना तन्यांत, मुख आवता कह दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाए, मेघ बिना जो खेती जाए। गोविंद भजन बिन बैठे सब काम, ज्यों कृपन के निरार्थ दाम। धन धन ते जन जय कट बस्यो हर नाव, नानक ताक बल बल जाओ। रह तवर कछ अवर कमावत, मन ही प्रीत मुखो कंडलावत। जान ना प्रभु पर बीन, बार पेख ना काहू पीन। अवर उपदेश है अपना कराय, आवत जावत जन्म मरै। जिसका अंतर बसा निरंकार, तिसकी सीख करै संसार। जो तुम पाने तिन प्रभु जाता, नानक उन जन चरण प्राता। करो बिनती पार ब्रह्म सब जान, अपना किया पह मन पह आप। आप कतन बेरा, किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा। उपाव स्यानव सगल ते रहत, सब कछ जान तुम की रहत। जिस पावै तिस लै लड़ लाए, संत नंतर समाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमुख निमुख जप नानक।

गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद सति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जे प्रसाद सुबंधन तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे जय प्रसाद बसह सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रचना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ढाई है ध्यान जोग जय प्रसाद पाठ पटंब हटावे तिसे त्याग कतवर लुभावे जय प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैर ताका जस कवि जय जय प्रसाद तो सबको मन मुख ताको जस रसन बुकन जय प्रसाद तिरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पाठ ब्रह्म प्राप्ति जप कर गए मन पावे नान पासे ती कर जावे जय प्रसाद आरोपन चंदे ही लिव लवो तिस राम स्नेही जय प्रसाद तिरौला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगल छित्र ढाके मन तरनी पाठा कर प्रभु तंक जय प्रसाद तुझको न पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु चय जय प्रसाद पाए दुर्लभ देह नानक ताप की भगत करे जय प्रसाद अभुखन पहरी जय मत सिमरत कमाल की जय जय प्रसाद असवाह ससवारी मन तिस प्रभु को कबू नाम विसारी जय प्रसाद बाग मिलक तनारा क्रोध प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसह त्याई तिसे त्याए जो कलख है इहां उहां नानक तेरी रख है जय प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पैर का तिसका ध्यान जय प्रसाद तू चार बिहारी तिस प्रभु को सा सा सितारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप तो प्रभु सिमरहु सदा अनूप जय प्रसाद तेरी नीति जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक तिसकै जय प्रसाद सुनह कर्ण नाद जय प्रसाद भिखै बिस्माद जय प्रसाद बुल अमृत रसना जय प्रसाद सुख जय बसना जय प्रसाद हस्त कर चलै जय प्रसाद संपूर्ण फल है जय प्रसाद परम गत पावै जय प्रसाद सुख सह समावै ऐसा प्रभु त्याग गौर कतलाकु गुर प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनोह विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे ते सहजान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पावे साट रे मन मेरे तू ता सुरात जय प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा त्यो प्रगास प्रभु दया ते कमल विकास प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए सर्वनिधान प्रभु तेरी मह आपको कछु ना किन्हु लै जित जित लाभो तित लगै हर नाथ नानक इन का कछु ना हाथ श्लोक आगम आकार पार ब्रह्म सोए जो जो कह सो मुक्ता होए सो निकता नानक बिनवंता साज न किय चर्च कथा अष्टपदी साध कह सामुख उज्जल होत साध कह संगमल सगली कोत साध कह संग मिटै अभिमान साध कह संग प्रगटै सो ज्ञान साध कह संग बुझै परम नेरा साध संग सब होत नबेरा साध कह संग पाए नाम रतन साध कह संग के कुपर जतन साध की महिमा वर्णै कौन प्राणी नान साध की शोभा ब्रह्माय समानी साध कह संग या गोचर मिलाय साध कह संग सदा प्रफुल्लाय साध कह संग का वह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हो सब की रेल साध कह संग मनोहर बैन साध कह संग न कतहूं तावै साध संग स्थित मन पावै साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस चौने बैर साध कै संग ना बिगा पैर साध कै संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध कै संग नाही हो ताप साध कै संग तजै सव्याप आपे जान साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बनयाई साध कै संग न कबहूं तावै साध कै संग सदा सुख पावै साधु संग बसया गोचर लहै साधु कै संग चरसै साध कै संग बसै तन उच्चै साधु कै संग महर पहुंचै साध कै संग दरड़ै सब धर्म साध कै संग केवल पार ब्रह्म साध कै संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साध कै संग सब कुल उधारै साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै साधु कै संग सो धन पावै जिस अंते सब को वसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन
ਸਾਧਕਾ ਸੰਗ ਸਰਵ ਥਾਨ ਕੰਮ, ਨਾਨਕ ਸਾਧਕਾ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ, ਸਾਧਕਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਸਾਧਕਾ ਸੰਗ ਕਲੁਖਤ ਹਰੈ, ਸਾਧਕਾ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪ੍ਰਹਰੈ, ਸਾਧਕਾ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹਿਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਚਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਸਾਧਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧਕ ਬਸੈ, ਨਾਨਕ ਉਦਰੈ, ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਪਰ ਨਿਸਤਰੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮਿੱਠਾ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘਟ ਘਟ ਡਿੱਠਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਇਆ ਕਿਆ ਕਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ, ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਜੇਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆ ਨਹਿ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ,

ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म गनी सर्व का धनी श्लोक उड़तार जो अंतरनाम सर्व मैं पिथा भगवान निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार है नानक उपरा सगल निस्तार है। मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दक्ष पात्र रूप ना पिख नित्र साथी टहल संसंग हेत करना सुन काहू की निंदा साते जाने पुष्को मंदा गुर प्रसाद पिछया प्रहर है मन की वासना मन ते तरह इंद्री जित पंच दोख ते रहत नान कोट मध्य को ऐसा प्रस वैष्णो सोज सुपर सुप्रसन्न विष्णु की माया ते हो तेना कर्म करत हो वैने कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू पाल की इच्छा नहीं बाछ है केवल भगत की तुम संग्राच है मन तन अंतर सिमन गोपाल सब उपर होवत कृपाल आप दृढ़ावरा नाम जपावै नान को वैष्णो परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजा सगल पार ब्रह्म साध संग पत पामल होवै तिस भगवती कीमत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नतनीत मंत नर पै बिशन प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रभुत है राम नाम आत्म है सुदै राम नाम सारस पीवै उस पंडित के उपदेशक जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो ना आवै वेद प्राण स्मृत पूजै मूल सुख मैं जान स्थूल चहो वर्ण को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवर नाम है जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए साध संग पावै जन कोय कर कृपांतर उतारै पश प्रेत मुगत पात्र को तारै सर्व रूप का उखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत किते ना पाईऐ धर्म नानक तिस मिलै जिस लिख्या धुर कर्म जिसका मन पर ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसन तिन पाए तिन पाया सदा निकट निकटार जान सो दास वर्ग है प्रमाण अपने दास को आप कृपा करै तिस दास को सब सूजी परै सगल संग्या तमय दास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा तिहता वै जीवन मुख सुखावै तैसा हरख तैसा उत्सोग सदा आनंद तह नहीं ब्योग तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा अभमान तैसा रंग तैसा रजान जो वरताए साई जुगत नानको पुरखैया जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर रखै तैसा तिन नाओ आपे कर्ण क्रामन जोग प्रभावै सोई गुण होगा पसरो आप होया नत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अवनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल श्लोक उस्तत करै अनेक जन अंत ना पारावार नानक रचना प्रवृति बहु विद्यन प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट मन पर मह उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपी स्रोते कई कोट आत्म ध्यान धर है कई कोट कब का विचार है कई कोट नव तन नाम त्यावै नानक कते कांत ना पावै कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिगात्म कोर कई कोट पर दर्व को हिराय कई कोट पर दुख ना कराय कई कोट माया सर्म माहे कई कोट पर देश पर माहे जित जित लाभ चित तिलकना नान करते की जान करता रचना कई कोट सिद्धति जोगी कई कोट राज रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पात्र वृक्ष निपजाए कई कोट पौन पानी बैसंतर कई कोट देश भू मंडल कई कोट सस्य सून खत्र कई कोट देव दानविंद्र त्रिछतर सगल समग्री अपने सुतारै नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तारै।

भी रहस्यमय आप उपदेश समझ आप आपे रचा सबका साथ आपकी अपन विस्तार सब कछ उसका ओ करनहार उससे भिन्न कहो पिछो शांत नंतर कह सो अपने चले तब करनहार।

कोट मदे किन बिरले तीना पला पला पला त्रारूप वक सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कट कट सुनी सरवन बख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जप नानक मन प्री श्लोक संत सरण जो जन परै सो जन उदरनहार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आजा कटै संत कै दुखन जम ते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख तब जाए संत कै दुख नरक मह पाए संत कै दुखन मत होय मलीन संत कै दुखन सोभा ते हीन संत के हते को रखै न कोई संत कै दुखन थान प्रष्ट होय संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक पी तरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग ज्यों लवै संतन कै दुखन सर्प जौन पाए संत कै दुखन त्रिगत जौन करमाए संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै संत कै दुखन सब कुछलै संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीच निचाए संदोखी का ता को ना है नानक संत पावै ता ओ पी गत पाए संत कनंदक मा अतताई संत कनंदक खंड करना पाई संत का निंदक महा त्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखी हर दीना संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा विजोग संत की निंदा दुख मह दुख नानक संत पावै ता उसका पी होय मोख संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डाला गय संत के दुखी को सब त्यागै संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा बेकारी संत का दुखी जन्म मरै संत की दुख ना सुख ते टरै संत के दुखी को नाहीं ठाऊ नानक संत पावै तां लै मिलाए संत का दुखी अद बीचे टूटै संत का दुखी कितै काज ना पहुँचै संत के दुखी को ध्यान प्रमाइया संत का दुखी उजड़ पाइया संत का दुखी अंतर ते थोथा ज्यों सास बिना मिट तपकी लोथा संत के दुखी की जड़ कितना है अपन भी जापे ही खाए संत के दुखी को वरना रखन हार नानक संत भागत लायो बार संत का दुखी यों बिल लाए ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजा ज्यों पाव की तनहीं त्रापै संत का दुखी छुटै के ला ज्यों बुआ तिल खेत मह दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सद मिथ्या कहत किरत नंदक का धुरही पया नानक जो तिस भावै सो इच्छिया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिला सजाए संत का दुखी सदा सहकाइया संत का दुखी न मरै ना जवाइया संत के दुखी की पूजन आसा संत का दुखी चले न रसा संत का दुख ना तिष्ठा कोई जैसा भावै तैसा कोई होए पया कीर्तना मिटै कोई नानक जानै सच्चा सोए साव का तिसके ओ करना हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उस्तत करो दिन रात तिसै त्यागो सास विरास साव का शिवरता तिसका किया जैसा करे तैसा को थी अपना खेल करना हार दूसर कौन कह विचार जिसनु कृपा करै तिस अपन नाम दे बड़ भागी नानक जन से सलोक जो स्यान सोच न हो सिमरो हर हर राय एका सर मन रखो नानक दुख भरम पौ जायश्वरी मान की टेक बिटी सब जान देवन कोई कै भगवान जिस कह दिया रह अगाए बहुर ना तृष्णा लग गए आए मारा राखै को आप मान कै किस नाई हाथ तिसका हुकुम सुख तिसका नाम रखन परो सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन लागै कोई उस्तत मन मह कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना मृत पियो सदा सुहेला घर लह जियो नैनो पेखा कर करंग साध संग बिन सह सब संग चरण कलो मार को बिंद मिटह पाप जपिया हर बिंद कर हर कर्म सरवण हर कथा हर दरकह नानक उज्जल मथा बट भागी ते जन जग माहे सदा सदार के गुण गाए राम नाम जो कह विचार से तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जन होते सुखी एको एक एक पछाना एक तुकी ओ सोची जाना नाम संग जिसका मन मान्या नानक तिन्ह निरंजन जान्या गुर प्रसाद अपना सूझ तिसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रूप ते ओ हर जन रहत अंजन कीर्तन केवल बख्यान गृहस्थ में सुई निर्वाण एक ऊपर जे जन की आशा तिसकी कट गया दम की वासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिन्ह लग गया दुख
जिसको हर प्रमाण चित्त्यावै सो संत हिला नहीं टुलावै, जिस प्रव्यापना कृपा करै सो सेवक कहो किससे डरै, जैसा साता सा दृष्टाय अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजया गुर प्रसाद तत सब उद्या, जब देखो तब सब कुछ मूल, नानक सो सुखम सो यस्तूल, नह किस जन्म न किस मरै, अपन चले ताप ही करै आवन जावन, दृष्टान दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट, आपे आप सगल मह आप, अनक जुगत रख थाप थाप, अपना सीना ही किस खंड, धारण धारो ब्रह्मंड, अलख भेव पुरख प्रताप, आप जपाए तनानक जाप, जिन प्रभ दत्ता सो सुभवंत, सगल संसार उतरै तनमंत, प्रभ के सेव सगल उदारन, प्रभ के सेव तू विसारन, आपे मेलै कृपाल, गुर का शब्द जपै निहाल, उनकी सेवा सोई लागै, जिसनु कृपा करह बड़ भागै, नाम जप पावै विश्राम, नानक तिन पुरख को तुम करमान, जो किस करै सो प्राप कर अंग, सदा सदा बसै हर संग, तैं सुभाय होवै सो होय, करण हार पछाण सोय, प्राप का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिस उपदे तिस मह समाये, ओ सुख निदान उन्हों बन्याए, आपस को आप दीनो मान, नान प्राप जाने को जान सलोक, सर्व कला परपूर प्रभ बिरथा जान नहार, जाकै सिमरन उद्रिया, नानक तिस बलिहार इष्टपदी, टूटी कंड नहार को पालू, सर्व की आपे प्रतपालू, सगल की चिंता जिस मन माहे, तिसते बिरथा कोई नाहे, रे मन मेरे सदा हर जाप, अवनासी प्रवे आपे आप, अपन किया कछु न होए, जे सब प्राणी लोचै कोय, तिस बिनाई तेरा किस काम, गत नानक जप हे कर नाम, रूपवंत होए नाही मोह, प्रभ की जो सगल कटतो है, धनवंता होए क्या को कर बै, जा साब के तिसका दिया दर बै, अथु राजे को कहावै, प्रभ की कला बिना कहता वै, जे को होए बै दातार, तिस देन हार जन गावार, जिस गुर प्रसाद उपै हो रूग, नानक सो जन सदा अरूग, जो मंदर को थामै संबन, त्यों गुर का शब्द मन संबन, जो पाखाण नव चढ़ तरै, प्राणी गुर चरण लिप नस्तरै, जो अंधकार दीपक पर गास, गुर दर्शन देख मन होए विगास, जो माँ उद्यान मह मार्ग पावै, तो साधु संग मिल जोत प्रगटावै, तेन संतन की बाछो तूर, नानक की प्रभ लोचा पूर, मन मूरख का बिल लाइया, पूरब लिखे का लिखिया पाइया, दुख सुख प्राप्त देवनहार, अवर त्याग तुंत सहज तार, जो कछ करै सोई सुखमान, भूला काहे फिरे अजान, कौन बसाई तेरा संग, लप रहो रस लोभी पतंग, राम नाम जप हृदय माहे, नानक पत सेती घर जाहे, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया,

चन सात के तो है तो पियो और सात को अपना जियो सात की तूर करो स्नान सात ऊपर जाइए कुर्बान सात सेवावट भागी पाइए साध संग हर कीर्तन गाइए अनक बिगनते साधु रख हर गुण गाय अमृत रस चख ओट गई संत दरिया सर्व तूख नानक ते पाया मृतक को जीवन हार भूखे को देवत्याधार सर्व निधान जाकी दृष्टि माए पूर्व लिखे का लेना पाए साव के तिस साव करना जोग तिस बिन दूसर हुआ न होग जप जन सदा सदा दिन रहनी साव ते ऊच निर्मल करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल किया जा कै मन गुर की प्रतीत तिस जनया व्यार प्रवचीत भगत भगत सुनिय तलोए जा कै हृदय को होए सत करनी सचता की रहत सत हृदय सतमुख कैत साची दृश्य सचा आकार सच वर्त सचा पसार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक तो जन सतमता श्लोक रूप नारे सुना रंग किच त्रिगुण ते प्रभ भिन्न तिस बुझाए नानका जिस हो वैसो प्रसन्न ऐश्वरी

शुक्र भगता तुम कहचाए प्रवपने सो रहसमाए। जो हो आहो वसो जान प्रव अपने का हुक्म पुछान, जिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक ना जानो।

तो जन सर्व सुख का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावै तिसका दर्शा पा मिटावै अवर स्याणम सगली छाड तिस जन की तू सेवा लाग आमजा न हो भी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा श्लोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसका संग सिखुदर नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिखी करै प्रतपाल सेवक हो गुरसदा दयाल सिखी गुर दुरमत मलहर गुर बचनिया नाम त्रै सतगुर सिखे बंधन काट है गुर का सिख विकार ते हट है सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख वडभागी है सतगुर सिखा हलत पल सवार नानक सतगुर सिखो जी नाल समार है गुर कै ग्रह सेवक दूर है गुर की आज्ञा मन में सहै आपस को कर कछ ना जनावै हर हर नाम हृदय सत्य हावै मन बिच है सतगुर कै पास ते सेवक के कार्य रास सेवा करत होए नेह कामी तिस को होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिससे आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस विश्वे गुर का मन मानै सो सेवक परमेश्वर की गत जानै सो सतगुर जिसके दह हर नाव अनक बार गुर को बल जाओ सर्व निधान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग रता ब्रह्म है जन जन्म है पार ब्रह्म एक कै आप नहीं कच परम सह स्यान प्लिया न जाइय नानक ऐसा गुर बटभागी पाई है सफल दर्शन पेखत पुनीत पर सत चरण गत निर्मल रीत पेखत संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरकै गवे सुनकर वचन कन्या गाने मन संतोख खत्म पतियाने पूरा गुर खोजा का मंत्र अमृत पिख है हुए संत गुण व्यंत कीमत नहीं पाए नानक तिस पावै तिस लय मिलाए जे बाय पुस्तक सतपुरख पूर्ण बबेक काहू बोलना पौचत प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्बानी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकी कीमत न पाई अनक भगत बंधन करै चरण कमल हृदय सिमरै सत बलिहारी सतगुर अपने नानक तिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने इहो हरस पावै जन कोई अमृत पीवै अमर सोय उस पुरख का ना

अंधकार दीपक परगासे नानक परमो दुख ते नासे सप्त माए ठान वरताई अंध पया दुख नाथे पाई जन्म मन के मिट्यन देसे साधु के पूरन उपदेसे भव चुका निरपोह बसे सगल ब्याज मन ते कह नसे जिसका साथ कृपा तारी सात संग जपना मुरारी सिख पाई चुके परम गवन सुन नानक हर हर जस रवन निर्गुणा सरगुण पियो ही कला तारिन सगली मोही अपने त्रित प्रव्याप बनाए अपनी कीमत आपे पाई हार बिन दूजा नाही कोई सर्व निरंतर को सोई उत्पोत व्यारूप रंग पै प्रकाश साधका संग रच रचना अपनी कल तारी अनक बार नानक बलिहारी सलोक साधना चल बिन भजन बिख्या सगली चार हर हर नाम कमावना नानक केतन सारस्परी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव समीप विचारो चरण कमल में उतारो कर्ण कर्ण सो प्राप समर्थ दृढ़ कर कहो नाम हरवत एतन संचो हो भगवंत संजना का निर्मल मंत एकाश रखु मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चाकुन छुटता वह सो तनहार सेवा ते पावे जिस को नित बाछा मीत सो सुख साधु संप्रीत जिस शोभा को करह भली करनी सा शोभा पजहर की सरनी अन क्यों पावी रोग न जाए रोग मिटे अरव खुद लाए सर्व निधान मैं नाम निधान जप नंदर गय प्रवान मन प्रभु दो हर कह नाए दै दिस्तावता बैठाए ता को बिघन ना लग कोय जा कर दसार सोए काल साची ठंड हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन सह पूरन होए आस भगत पाए आत्म प्रकाश चित कर जाए बस्या नाशी कहो नानक काटी जमपाती सत विचार कह जन साचा जन्म रह सुखा चुकाचा आवागमन कह पल सेव आप त्याग सन गुरुदेव यो रतन जन्म कहो यो दारु हर हर सिमर प्राण आधार अन पाप न चुत न हारे शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन वंशत नानक फल पाए संग न चाल से रतना तू क्या लगता वह मूर्ख मना सोतमीत कुटंबर बनता इन ते कहो तुम कौन सनाथा राज रंग माया विस्तार इन ते कहो कौन चटकार आसस्ती रथ सवारी झूठा डंप झूठ पसारी जिन दिए तिस बुजना बिगना नाम विसार नानक पछताना गुर की मत तूले एने भगत बिना बो डूबे स्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल हो तुम्हारो चीत चरण कमल रखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाए आप जपो अबरा नाम जपावो सुनत कह त्रैत दत पावो सार भू सतार को नाओ सह सुबह नानक गुण गाओ गुण गाव तेरी उतरस मैल बिनस जाय हो मैं बिफैल होहे अचिंत बसै सुख नाल सास बरा सर नाम समाल छाट चनम सवली मना सास संग पावे सचना हर पूंजी सन करो व्यवहार यहाँ सुख कर गय जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाकै मस्तक लेख एको जापे को सलाहे एक सिमर एको मनाहे एक के गुण गाओ अनंत मंतन जापे भगवंत एको एक एक हराप पूरन पूर्व प्रव्याप अनक विस्तार एक ते पहे एक रात प्राचित गए

वनस्पति जब आकार एक छुना दृष्टि तापा पुन तब कहते होता। जब धारी अपन सुन समात तब बैर विरोध के संक मात। जब इसका परण चेहना जापत तब हरक शोक किसे व्यापत। जब अपन आप पार ब्रह्म तब कहा कि सोवत परम अपन खेल आप वर्ती जानान करना हार ना दूजा। जब होवत प्राप्त केवल तनी तब अनुकत कहो किसको गनी। जब एक हरक म पार तब नरक स्वरूप कहो कौन तार। जब निर्गुण प्राप्त सह सवाए तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जो तरह तब कवन डर कवन कत डर अपन चले तब करना हार नानक ठाकुर म पार। अविनाशी सुख अपने आसन तह जनमन को काम विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सो तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत गोचर प्रभिका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ नरंजन गोचर का दे तब कौन ठिक कौन बंधन बाधे। अपन आप ही अचर जा नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा। जह निर्मल पुरुख पुरुख पत होता तह बिन मैल कहो क्या धोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अपमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तह छल सिदर लग कह की सा। जय दो स्वरूपी दो संग समावे तह किस भूकम तृप्तावे कर्ण करावन करण हार। नानक करते का नाह सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कौन माय बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कला पे परवीन तय वेद कतेव कहाँ कोचीन। जब अपन आप पुरतार है तो सगन सगन कहाँ विचार है। जय अपन उचापन अपने रात है कौन ठाकर कौन कही अचेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जन हो आप। जय अचल अचेदा भेस माया उहा किसे व्यापक माया आपस को अपया देश तो गुण का नाही प्रवेश। जय कर एक एक भगवंता तह कौन अचिंत सला कह चिंता। जय अपन आप आपत्ति आरा तह कौन कथ है कौन सुन न हारा। बहो बेअंत उच्चे उच्चा नानक आपस को अपे पहुचा। जा प्रत्यो प्रपंच कार त्यो गुण मैं किन्नो विस्तार। पापुन ते पै कावत को नर को सुरुक बंछावत आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की बख्यान अपन के लाभ कर देख खेल संकोच है तो नानक टिक। जय आपके भगत है आप जय पसरा पासा संत प्रताप तू पाका अपह तनी उनकी सो बौन बनी। आप कौतक करे अंध चोज आप रस भोग निर्दोग। जिस भावे तिसे अपना लावे जिस भावे तिसे खेल खिलावे। बेसमार अथा अगणित तोलै ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोलै श्लोक। जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार नानक को पसरिया दूजा कह विस्तार। अष्टपदी आप कथा आप सुनन हार आप कह एक आप विस्तार। जात भावे ता सृष्टि उपाय अपने भाने लै समाए। तुम ते भिन्न ही किछ होए अपन तू सब जगत परो जा को प्रभ जो आप बुझाए। सत नाम सोई जन पाए सो समदर्शी सत का बेता नानक सगल सृष्टि का जेता। जी जंतर सब ताक हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिसरा कत कोई ना मारा सो मुआ जिस मनो बिसारा। तिस्ता जबर कहाँ को जाए सब सिरे निरंजन राय।

त्यागो तंग संजना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग गण सागर तरो हर तन के पालो पंडार नानक गुरपुरे नमस्कार किम कुशल सहित आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित तवाहु नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बार बार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल ए रतन सुन कुमावत होत उधार आप त्रैलोक अनुसार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द नहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजै प्रगटे गोपाल महान कै माथे नानक उतरे तिन कै साथे सन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट कै बैर भय सवरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूरन होई सेवक की सेवा

काकर चीत सुखमणि सहत गोविंद गुण नाम। जिस मन बसै सुहोत निदान सर्वेक्षा ताकि पूरन होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सब ते ऊच पाए स्थान बहु न होवै अमर जान। हर तन का चलै जन सोए नान जिसै प्राप्त होए। खेम शांत रित नाम निध बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध। विद्या तप जोग परम ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ तम स्नान। चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास। सुंदर चतर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टिता। ए फल तिस जन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने। एहो निदान जपै मन कोई सब जुग मह ताकी गत होए। गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी।

ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र गोतंदर इतिहासिक गुरद्वारा गुरद्वारा बंगला साहब अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु प्यारी संगत जी टीवी माध्यम राही दूरदार देश विसंतरा अंदर अपने घर अंदर शब्दी विचार सरवण कर रही गुरु प्यारी गुरु प्यारी संगत जी प्यार साहब गुरदेवता जी वालों बख्श की हुई गुरु फतेह नाल संग पाओ तो आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज इतिहास के अंदर बहुत ही महानता वाला दिहाड़ा है छोटे साहिबजादों की शहीदी का दिहाड़ा भी नान शाही कलंडर के अनुसार देश बसंतरा अंदर बड़ी श्रद्धा भावना नाल उन्हां दीआं कीतीआं होईआं कुरबानियां नूं याद किया जा रहा। शब्द के विचार के नाल इस इतिहासक दिहाड़े में भी याद करने का यत्न किया जाएगा। अज के विचार गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के एक वाक तो आरंभ करेंगे। साहिबान का वाक है सुख दुख जो परसे नहीं लोग मोह अभिमान कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान। आम सिखी बहुत ज्यादा मगाल से खड़े हो गए हैं कोई बत्तियां बंद करके रब न लभन का यत्न कर रहे हैं तो कोई दुपहरे कट गए तो कोई चुपहरे कट गए कोई तीर्थां ते इशनान करके रब नूं लभण दा यतन कर रहा है ते कई पत्थर दे बुत घर के उन्हां दी पूजा कर रहा है ते कुछ मूर्तियां बना के घर अंदर वास्ते उन्हां दी पूजा करके रब नूं लभण दा यतन कर रहा है। पर गुरबाणी ने मनुख नूं भगवान दा रूप आख्या भगवान दा रूप बन लई इस श्लोक अंदर पांच नुक्ते साडे सामने रखे ने। पहला नुक्ता है सुख दूसरा नुक्ता है दुख का

0: फिर कोई संसार का मायक पदार्थ उन्हें बुला नहीं सकता, वह कौमा रोकदा नहीं, समझौते नहीं करेगा, इस वास्ते उनकी मत स्थिर हो जाएगी। भगता का हर अंगीकार करे कार्य सहारा हो, भगता का हर असं यह समझा है खास तौर पर अपने पिंडों के जिदा उदास जहा चेहरा हो ढिली पग बी हो ढिला जहा तुर फिर होने असं भगत डेफिनेशन बना ली है कि फरीद साहब के जरा श्लोकों में पढ़ने का यत्न करिए कि फरीद साहब सानू भगत की डेफिनेशन दसते हैं। मत होंगे हो आना तान होंगे हो जताना अणहुंदे आप गंदाए कोई ऐसा भगत सदाए, आप भगत की डेफिनेशन है। मत होंगे हो आना खास तौर पर पंजाब की धरती से जो कोई पुरानी चढ़ाई कर जाता ना उदों इधरों उधरों आंढ़ी गवांढ़ी बहुत सारिया मतों देने वास्ते आ जाते हैं। तो जो उन्होंने कहा जाए ना भाई आप पंथ प्रवान रह मर्यादा कहते हैं पासे रखो इहदा कोई काम नहीं। फिर पुराने पुराणा में लिखा है कि मृतक शरीर के लागे उची उची परिवार वाले ताहा मारन तो वो आत्मा राय पै जाती है। कहते अखीर से राय पाना हो तो फिर वो आले दुआले पानी का गेड़ा दे के कुजे ठा करके सिर वाले पासे भन्या जाए ता कि आत्मा होर उड़ जाए। आप कर रहे ना पिंडा बच्चे पर गुरमत नहीं हैगी, पर जो कोई मत नहीं हैगी वह बंदा यह कह रहा है कि कुजा जरूर भन्न का यत्न करो। तो गुरु साहब ने मत होंगी हो आना जो घटो घट जे अगल की गल नहीं करनी चेती कर रहे दलील के बिना सिर पैर गल करनी। मत होंगी हो आना तान होंगे हो निशाना बल हैगा पर रोग नहीं पाँगा। अपने पिंडा में भी है रोह ही है जिन्हें कचहरियां सारिया रोह करते ने और कल वास्ते ने तान होंगे हो नाणा अणहुंदे आप बंदाए कोई वस्तु कोल नहीं फिर भी कुछ ना कुछ किसी का भला किसी सेवा करने की लोचदा होणहुंदे जो कोल नहीं फिर भी मनाने का यत्न करता है कि फरीद साहब ने कोई ऐसा भगत सदाए। असल भगत यह है असी भगतों का पहरावा देख कह करो भगत तो साहबान ने ज्ञानी तो भगत की डेफिनेशन दसी है हर भगत का हर अंगीकार करे कार्य सुहावा हो। जिन्हें गुरु की मत लै ली तो गुरु की मत तो चल पाया फिर परमात्मा ने उन्हें अंगीकार कर लिया भाव वो रब्बी गुणा नाल भरपूर हो गया कार्य सुहावा हो। उसकी जिंदगी के जेडे आरंभ हुए कार्य शुभ गुणा दे संपूर्ण हो जाते हैं। तो श्लोक का दूजा पाठ भी बड़ा प्यारा है मनमुख मूलों पलायन विचला लोग अहंकार। मनमुख जेडे अपने मत के पिछे चलते हैं मूलों पलायन मनमुख जेड़े अपने मन के पिछे चलते हैं उन्होंने अंदर की है लोभ लालच हंकार उन्होंने हर रोज झगड़ा कर जाते हैं मिटल जाए मूलों भुलिया मूल की है। कल के शब्द के विचार असी एक गल समझ का यत्न किया मूल का मूल है साडा गुरु ग्रंथ साहब जी। जो बंदा मूल के नाल धुरे के नाल जुड़िया है जो गुरबाणी का वाक है करता पुरख खलोवा वाल ना लंगा होगा तो बंदा मूल में टुट जाए तो बंदा नेश के दूर हो जाता है। जोड़ा बंदा मनमुख मूलों भलायन भलायन रखा वस्तु कोई सही हैगी है पर चेता भुल गया क्यों चेता भुल गया कोई तीन गल आ गई लभ लोभ अहंकार। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਗੰਗੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਜ਼ਰੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੱਬੇ ਨੂੰ ਝਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਤੋਕੇ ਜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਤੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਾਰਜ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਨੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਮਤ ਮਤ ਅਚਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਾਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕੌਮ ਅੱਜ ਕਿਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਅੱਜ ਇਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਤੀਆਂ ਪਈ ਕਰੇ ਬੰਦ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜਪੋ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਕਟੋ ਸੁਪਹਿਰੋ, ਫਿਰ ਕਟੋ ਦੁਪਹਿਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋਧ ਮਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੋਲਣ ਸਾਧਰ ਕਾਰੋ, ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮਤ ਸੋਝੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਰਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੜਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਚੱਲਣਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਚੱਲਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕਰਮ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਦੇ ਲੋਕ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸੂਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਰਮ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਲ ਕਰਨੇ
1: ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧਾਰ।
0: ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚੋਟਾਂ ਜੋ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਲਾਲਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਧਾਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਪਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆ ਨਾਨਕ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾਨਕ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲੈਣੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ
1: ਤਿੰਨਕੋ ਸੰਸਾਰ ਕਰੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਰ ਕਰਤਾਰੋ,
0: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਕੋ ਸੰਸਥਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਰ ਕਰਤਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ, ਉਪਦੇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਗੁਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਡਰ ਭੋ ਮੈਨੇ ਡਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਮੈਨੇ ਚਿੰਤਾ। ये डर से ये चिंतावान साडे नेड़े नहीं रहनगियां।
1: तोर तिनकी पहल रखदा आपो रखण हारो,
0: फिर उन्हां दी परमात्मा वो त्याग रखदा है। असीं त्याग रखना पता किन्नू समझने हैं, असीं त्याग रखदे हां रखना समझदे हां कि अरदास कीती कार मिल गई, अरदास कीती मकान बन गया, असीं ने त्याग रखी गई नहीं। जे मकान नहीं नहीं रहा तो सच के उत्ते बंदा तुर रहा है तो समझे कि वही एक त्याग रखी है। गल तो है सच के उत्ते तुरना। इस वास्ते गुरु साहब महाराज ने मुक्ति बड़े सानू प्यार में समझाए ने, त्याग रखदा भाव दुख सुख विच इक सारता, ना को वैरी ना को बेगाना, उस ते निंदा तो उपर उठ के सोने नू लोहे दे बराबर जानने वाला, भाव लियाईयां नू तुस जानने वाला, उन्हां दी त्याग संसार विच रहिंदी है।
1: मिल प्रीतम सुख पाया सच्चा शब्द विचारो,
0: देखो हर तक अंदर शब्द ही विचार, तो शब्द ही विचार से प्रीतम के गुण मिल गए। तो गुरु प्यार वाले सब कहने सच्चे शब्द ही विचार द्वारा गुणा का पता लगता है, साड़ी छान पैंदी है, फिर साडा परमात्मा नाल मिलाप है। ये परमात्मा का मिलाप की है सुखा की प्राप्ति।
1: नानक सुखदाता आपे पर खनहार,
0: सह जी फरमाते ने सुखदाता सेवया, सुख देने वाले दाते की सिक्ख्या से जो अस तुर पे फिर सानू घटो घट एक चंगे के माड़े की परखन की जाच आ जाएगी।
1: पौड़ी जी जंग सब तेरे तू सब नाराज,
0: ये परमात्मा सारे जीव जंतु तेरे पैदा किए हुए ने, उन्होंने वर्तन ले तो गुणा की रात है।
1: जिस नोट सब कुछ मिले कोई होर शरीक नहीं तब पास,
0: देखो रब का शरीक कोई नहीं, पर आज जब सिक्खी का ध्यान मारते हैं तो थां पर थां रब के शरीक बने बैठे जी। आओ साढ़े को अरदास करा लो जो मंग जो मिल जाएगा रब के शरीक। हे परमात्मा तेरे वर्गा होर कोई भी नहीं, तेरा कोई होर शरीक नहीं जिसे को असी मिलिए।
1: तू इको दाता सब सुधा हर पैर दास,
0: तू सारी दुनिया ने शुभ गुणा दी दातां देने वाला, साड़ी भी तेरे अगे ही अरदास है।
1: जिस दी तुद पावे उस दी तू मन लै सो जन शाबाश, जिस दी तुद पावे तिस दी तू मन लै।
0: गुरु प्यारे बड़े बरीक अर्थ ने, जब असी रब के शब्द विचार गुणा के धारनी होकर तुरन का यत्न करांगे तो साड़ी अपने आप त्याग होगी और उस रस्ते के चलदे हुए सानू शाबाश मिलेगी। शाबाश बई इन्हें बड़िया मेहनत की
1: सब तेरा दुख दुपास,
0: तेरा ही सारे संसार में कौटली जरा है वरत रहा है, सबना दुख के सुख का तरला तेरे को ही है, भाव सारे सुख देने वाला तू है। दुख के सुख ये दो कपड़े ने तेरे हुक्म चलिया, ये सानू पहनने पैने। गुरु साहब वाले इस आज लड़ी वार पाठ की विचार के नाल थोड़ा थोड़ा असी गुरु नानक पातशाह के आरंभे हुए मिशन सुन का यत्न किया है। हुण आउंदे हाँ अज के इतिहास दिन वल। गुरु साहब वाले सिक्खी ने एक विकास किया है, सिक्खी ने एक पैंडा तय किया है। गुरु नानक पातशाह जी ने मारू थल रावी के बोलिया मध्य भारत के जंगलों अरब दिया रेतों के विच सिख धर्म की एक नींह रखी है। वो कहड़िया सच्चाइया जिन्हों को नींह रखी है, मुठत नीवी नानका गुण च न्याईया तत्, नानक सिक्का बोलिया तन मन सिक्का हो। ननकाणा साहब से सिक्खी आरंभ हुई है, तो ननकाणा साहब से सिक्खी आरंभ होकर पढ़ा किया है खडूर साहब की धरती उत्ते। गुरु अंगद पातशाह महाराज जी ने गुरु नानक पातशाह के दर्शाए हुए मार्ग से चलदिया इतने नौजवान बच्चिया की संभाल की है। उन्होंने गुरमुखी अखर गुरबाणी मल अखाड़े बना के दिए कि नौजवान पीढ़ी में संभाया जाए। अज का दिन भी नौजवान पीढ़ी में एक समर्पित दिन है। सिखी ने पैंडा तय किया, सिखी रुकी नहीं, सिखी अगे चली। सिखी आई है गोइंदवाल साहब, केंद्रीय स्थान बनया, प्रचार का केंद्र बनया। इस स्थान के उ सदा वास्ते छूत छात भेट दिया समाजिक बुराइया जो धर्म के नाम से खड़िया कीतिया सी उन्होंने चकना चूर किया। बराबर बैठ के लंगर छकन की हालत की। एक पानी के ब्राह्मण भी नहा सकता, शूद्र भी नहा सकता, बोली साहब की सृजना की। सिखी रुकी नहीं, अगे चली गए। दुनिया के अंदर केंद्रीय स्थान बनाया है, अंतरराष्ट्रीय पद्धर के सिखा ने व्यापारी बनाया है। 52 किस्म के कीर्ति गुरु का चक जिसनों अजकल श्री अमृतसर शहर बोलते हाँ, 52 कीर्तियों एक शहर विखाया। जिमें जिमें लोड़ घटती गई, पानी लोड़ की जरूरत पड़ी, किमें किमें सरोवर नवे बनाए गए। सिक्की ने तरन तारण शहर विखाया, हर गोबिंद साहब शहर विखाया, कीरतपुर शहर विखाया। अखीर में सिक्की का केंद्र बनया आनंदपुर फेरिया। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने इस जमीन मुल ली, शाह का नाम रखा माता जी के नाम से, नानकी का चक, तो फिर वह नाम बन गया आनंदपुर साहब। गुरु साहब महाराज सर के सच्चे पातशाह जी ने इस स्थान के उत्ते शिकार खोले। इस स्थान के उत्ते छोटिया मोटिया 14 जंगा लड़ी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने जीवन काल के अंदर 4 वड्डियां ते 14 छोटिया जंगा जड़िया ने उन्होंने लड़िया ने। जो भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जंग लड़ी या जंगा लड़िया ने, यह निजी लाभ की खातर नहीं, यह मनुखता की खातर, मनुखता के भले वास्ते। क्योंकि साडा आदर्श ही होया कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत जपदा, कि हर बंदा अपने जीवन के सुख का आनंद माण सके और गुलामी दिया जंजीरों से मुक्त हो सके। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान लगातार 9 सदियां गुलामी दिया जंजीरों नाल जकड़िया होया सी। इस मुल्क के जो मुहावरे बने हुए थे, खादा पींदा लाहेगा बाकी अहम शाहेगा, भी खा पी लो बाकी अहम शाह बदाली लुट के लै जाना। ये 1699 गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खंडे की पौल देती, जेड़ा गुरु नानक पातशाह जी ने खालसा सिरजिया सी। ध्यान देना, जेड़ा गुरु नानक पातशाह जी ने खालसा सिरजिया सी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उसनू साकार किया, प्रगट किया। और हलेमी राज का गुरु नानक पातशाह रखिया सी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पंजां प्यारिआं दी चोण की। दुनिया के अंदर निकला इतिहास है। फिर पहाड़ी राजियां ने सेंटर सरकार में रिपोर्टा लिखिया और गलत चिट्ठिया लिखिया, और उस औरंगजेब ने सूबा सरहद में पहाड़ी राजे की मदद करने की ताजीम की कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आनंदपुर साहब उन्होंने को खाली करवाया जाए। सरथा नदी में गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने परिवार को वंडिया। तेजा सिंह सावल दिया बनिया दिल हिलाने वाली 4 लाइना ने कि गोरा इस तरह सिर तो भार लाया, थोड़ा किसे पासे थोड़ा किसे पासे, ऐसी आई मुसीबत सिर उत्ते थोड़ा किसे पासे बाज किसे पासे, सावर सोहल चमखे गए बच्चिया का जोड़ा किसे पासे जोड़ा किसे पासे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने परिवार में 3 हिस्सों में वंडिया। वड्डे साहबजादे उन्हां दे पास ने, छोटे साहबजादे माता गुजर कौर जी नाल, ते महल भाई मन सिंह नाल दिल्ली में तोरी। चमकौर जी दूर अंदर ਚਾਲੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੰਗੂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੰਗੂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਯੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ

दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एक बड़ा वधिया पैंफलेट छपया है, सिखां दी घट रही आबादी की चिंता। 2011 की मरदम शुमारी में 2 करोड़ तो सिख 1 करोड़ 30 लाख रह गए थे। इस वास्ते गुरु प्यार वाले समझने की लोड़ है, निके निके तक में उन्होंने आप समझिए। जो भी अल्लाह यार खाली कर्म लिखती है, छोटे साहबजादे माता जी ने गल करते हैं, दरिया का छोड़ के सिपाही किधर गए, अब्बा बाजार से शाह लक्ष्मी किधर गए, बाई भी हमको भूल गए, छोटे जंग में अपना ख्याल नजर तो तफंग में। तो माता जी गल करते हैं, माता जी जब वे मीरे आएंगे, जब माता जी आए, जब साढ़े माता जी आएंगे, पिता जी आएंगे, असं गिला करके उन्होंने रसी आवेंगे, तुम सानू सरसा दरिया को छड़ के चले गए थी, कौन जानता इन्होंने साहबजाद का नीह अपने आप में चिणा के कौम का महल बना देना है। जब रणजीत अजीत शरीफ लाएंगे, अब्बा के साथ जिस कड़ी गुजार आएंगे, करके गिला हम एक से रूठ जाएंगे। जब रणजीत अजीत शरीफ लाएंगे, अब्बा के साथ जिस कड़ी गुजार आएंगे, करके गिला हम एक से रूठ जाएंगे। माता कद्दू पिता कद्दू भाई मनाएंगे, गले लगाकर वो कहेंगे मान जाओ मान जाओ, लेकिन हम नहीं मानेंगे। अपने घर में देखिए ना, छोटे बच्चे ने जब सिर करते हैं उन्होंने मनाइए गले लगा के, गले के बाहर निकलते हैं, असं मनना नहीं। जो भी अल्लाह यार खान लिखता है कि माता जी के नाल बच्चे बैठे ने, गलों में उन्होंने ख्याल ने, शायरों के ख्याल ने, पर जरा देखा जी आ इन्नी ठंड आ, ठंडा बुर्ज हो गए, हवा चलती हो गए, तो माँ ने छाती नाल दो लाला ने लाया हुआ हो गए, 7 साल से 9 साल की उम्र की है, पर घर उसको जी गुरबाणी गुरती मिली है, सिद्धांत मिला है, वो परफेक्ट है। अज साड़ा घर में सिद्धांत नहीं है, विचार नहीं है। जिमें मैं आरंभ की कथा की बेनती की थी, असं अपने घर के रीति रिवाज बाद लै के आ रहे हैं। जो मैं के कथन की गल दसी थी कि गुरु प्यार वाले तो बच्चों को खंडे की पौल देंगे, आपे सिखी ना जुड़ेंगे, तो जो उन्होंने के कथन की गल दसागे तो सिखी वाली भावना बन सकती है, कदम नहीं बन सकती। इस वास्ते योगी अल्लाह यार खान दलां बड़िया कमाल दिया ने। जब रणजीत अजीत शरीफ लाएंगे, अब्बा के साथ इस कड़ी गुजार आएंगे, करके गिला हम एक से रूठ जाएंगे, माता कभी पिता कभी भाई मनाएंगे, गले लगाकर वो कहेंगे मान जाओ, लेकिन हम नहीं मानेंगे, जिन हर अभी नहीं मनागे। चल करो ये अपने परिवार दी गल की। तो फिर जब माता जी ने सवेरे बच्चों तैयार करके भेजा है कचहरी वो से, तो ये भी अल्लाह यार खान की कलम लिखी है, जाने से पहले छल करिए, जाने से पहले आओ गले लगा कर दू, कैसे सीन होगा हो, जाने से पहले आओ गले लगा कर दू, केसों को कंघी कर दू। आ लाइन बड़ी भावपूर्त है। आज मैं चौंकों में प्रचारकों ने राज्य में फोटो लगी हुई ने ना, जो कि आही लाइन लिखी होगी तो मेरा ख्याल अद्धा बच्चों के 17,000 लेनिया थी। क्या कमाल जी लाइन है। आ चौंकों हाईलाइट करके योगी अल्लाह यार खान जी, जाने से पहले आओ गले लगा तो लू, किसों को कंघी कर दू, जरा मुंह गला तो लू, प्यारे सिरों पर नन्नी सी कलगी सजा तो लू, जाने से पहले तुमको दूल्हा बना तो लू। क्या कमाल के बोल ने, किसों को कंघी कर दू, जरा मुंह गला तो लू, जाने से पहले प्यारे सिरों पर नन्नी सी कलगी सजा तो लू, जाने से पहले दूल्हा बना तो लू। मिर्चे जी दिया बड़िया कमाल दिया लाइन ने साहबजादे ने शहादत संबंध अंदर, जो साहबजादे मूहों में चल के शहीद किया गया, वक् कवियों ने वक् विद्वानों के विचार रंग से खड़े करने वाले थे। गुरु प्यार वाले किसी ने कहा, दाता तेरा अजीत सिंह शहीद हो गया, दाता तेरा जोरावर सिंह फतेह हो गया, दाता तेरा फतेह सिंह शहीद हो गया। दात ने एक गल कही, मेरा अजीत सिंह रहा या नहीं रहा कोई बात नहीं, मेरा फतेह सिंह है या नहीं।

0: कोई बात नहीं, पर हर घर उत्ते जोरावर सिंह का झोला पैना चाहिए है, हर घर उत्ते अजीत सिंह सानू दिखना चाहिए है। बड़िया कमाल लाइन ने, बच्चे नीह जदों खलियार दिते सब मुगल पठानिया रोह पड़िया, उदो हवा के सुनम सुत पै गए, गुजा बिच मदानिया रोह पड़िया, पाए रैन कबूतरी आलमे चो पत्थर गुलसवाणिया रोह पड़िया, हाली हाली दिया बल रो पे हथा बिच पुरानिया रोह पड़िया, शहर जाकर मत्थे ना वट पाया सी आकाश भावे थल थला गया, मुश्किल आई उदासियां चीर रहा तो मुड़का पत्थरों के मुंह से आ गया, मुश्किल आई उदासियां चीर रहा तो मुड़का पत्थरों के मुंह से आ गया। इस वास्ते गुरु प्यार वाले अज के विचार इतों आरंभ किए, सुख दुख परसे नहीं लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रो मना सो मूर्त भगवान। इन्हों सारी गलों को ऊपर उठते हैं ये मूर्त भगवान दी, जिन्हों ने गुरु नानक पातशाह के सिखी सिद्धांत के गुण, इसलिए सिखी जनरेशन गायब नहीं है। जो गुरु तेग बहादुर साहब शहीदी दे रहे हो उन्होंने पोतरे ने शहादत दी है, अब जो अभी घर अपने बच्चों धार्मिक विद्या देने का यत्न नहीं करते तो कह रहे जनरेशन गायब, बच्चे कहा नहीं मानते। असि गुरमत ज्ञान मिशन कॉलेज ने एक यत्न रंभिया है, अपने पिंडा संभालिए बच्चों संभालिए, इसके तहत सियासत प्रचार सेंटर खोले ने, साडा टारगेट है अपनी नौजवान जी पीढ़ी बची है इन्होंने नशिया बारे जानकारी गुरबाणी जोड़िए, दस्तार की महत्ता समझा का यत्न करिए, नहीं तो अगर सिर पर दस्तार लखी हुई है शीशे लिखा का पुत सरदारा दे सू भइया देना क्या ये है, ही सरदारा के पुत है सानू अब पछाण अपने लिख दसनी पै रही है। गुरु प्यार वाले थोड़े समय अंदर शब्द विचार तो छोटे साहबजाद की शहादत इतिहास में जो महानता है वो आज संगठन करने का यत्न किया। अगले दो दिन शीसगंज गुरद्वारा साहब तो शब्द विचार संगठन साझ पाने का यत्न किया जाएगा। उस स्थान के उत्ते आई जी शब्द की विचार जी थी वो खींची सी भुला मेरिया वड़ियाओ गुरु साहब जी भी कुछ शब्द चंगा लगे हेल जी विखाया जी प्यार भिज गया खो पाई। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singhsabha2@gmail.com singhsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

0: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CIFK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह स्वा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.
3: Jiya je tu jindagi lodda hai

लो, ये काम तो गुरु नानक नहीं कर सकता। गुरु नानक ने अपना पंच निराला कर दिया। गुरु तो सब पातशाह जी तो केवल आखे आजाद हानि कराई पलो, थानू गुरु नानक ने निराला किया, इस लिए ओमी दर बरकतें थोड़े को होंगी जब ना खालसा रहे न्यारा। गलती कोई सी मेरा गुरु दशम पातशाह ने नहीं किया। गुरु दशम पातशाह जी ने उस गल याद कराया, शब्द जीती सिद्ध मंडली कि तुस अपना पंथ निराला बखा कर निराला कर दिया। गुरु दशम पातशाह जी ने मुड़ 200 साल बाद याद कराया, जब लग खालसा रहे न्यारा तब लगते जीओ में सारा, जब एक गह विप्रंत नीच मैं न करो इनकी प्रति। गुरु दशम पातशाह जी ने शीश मंगे ते आखिर मेरे दरबार विच पहुंच के मेरे नेड़े मेरे बल वजन वाले हर शीश दिन है। ते एक गल 200 बार पहला गुरु नानक ने भी याद दी, जो तो प्रेम खेलन का चाहो सिर बहता भी गरी मुड़िया, एक मार्ग पैर धरीजे सिर दीजे कान न खींचे। अमृत गुरु नानक से शुरू होया, गुरु दशम पातशाह तक कंप्लीट हो गया। तो वो जिस वक्त दिता गया अंदरला अमृत 200 वरा ते संपूर्ण जीवन की जमीर मुड़ बाणा दे के संपूर्ण कर दिता। 200 वरा बाणी दी गई, 200 वरा बाणी नाल सिंगिया गया सिख अमृत मन में आ गया। हुण 200 वरे बाद बाणा दे के संपूर्ण निराला कर दिता ताकि पता लग जाए। हम तो सोचना है आखिर जे दृष्ट भी अमृत है, जे नाम भी अमृत है, जे शब्द भी अमृत है, जे वेला भी अमृत है, तो फिर खंडे का अमृत ही होया। एक ख्याल करो गुरु साहब ने बाणी अंदर एक खोल रहा है,

हारे आपे झगर चुकावा, हारे आपे पंच तत् बिस्थारा, विच धातु पंच आप पावा। जन